विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।

चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है। पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहां मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा हो, कैसे जी पाएंगे हम? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। और जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर ये मौका आए न आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो,
तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रिज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती है और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रज में लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा। अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार,

ऐसी शिरानी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

राधा नाम से श्री कृष्ण को। वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना कुछ अच्छा ना लगे,

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है वो, भक्त नहीं है वो, साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई।

लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी। कैसे समा सकती है? लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई। कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं। राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए, यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कई बार ऐसे रैंडम लोग हमको ये बात बोल देते हैं ना कि तुमको अब पता है तुम्हारी लाइफ में एक नए नजरिए की जरूरत है। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और शो की शुरुआत हो रही है। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। और सिस्टर, यहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा कि जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं या एक मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं या एक फ्रेश स्टार्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं ना कि आपकी जो मॉर्निंग है वो डिसाइड करती है आपका पूरा दिन कैसे रहने वाला है। हम वो कहते थे ना, सुबह उठ किसका चेहरा आप देख के उठे थे, तो ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं। तो एक ऐसी आइडल या एक ऐसी सुबह की शुरुआत क्या होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए?
1: देखिए, अगर मैं सबकी ही बात करूं और विशेष जो हम भारत में रहने वाले हैं, जहां आंख खुलते ही सबसे पहले परमात्मा का नाम, परमात्मा का सिमरन या इस तरह की कुछ भी रिचुअल्स की जाती हैं, तो अगर हम आज भी उस चीज को लेकर चलते हैं तो इसमें मैं रूढ़िवादिता नहीं समझूंगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी चीज को अगर हम आज भी रखें कि जब हम आंखें खोलते हैं, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस लेवल बहुत एक्टिव होता है, हम कॉन्शियसली भले नींद में होते हैं लेकिन सबकॉन्शियस जो कहते हैं कि बहुत एक्टिव रहता है, तो उस दौरान हम जो थॉट्स करते हैं तो वो थॉट्स हमारे बहुत डीप में जाने की वजह से हमारी डेस्टिनी तक जाते हैं। तो उस दौरान अगर मैं परमात्मा का शुक्राना करती हूँ, उनको याद करती हूँ और जो लक्ष्य मुझे लेना है इस जीवन में, उस लक्ष्य के कुछ चलचित्र या कुछ भी इस तरह का शब्द या कुछ भी, अगर मैं उन चीज़ों को एफर्मेशन के रूप में दोहराती हूँ तो वो चीज़ बहुत इम्पैक्टफुल होता है माइंड के लिए और बॉडी के लिए भी, और डेस्टिनी में वो चीज़ की प्राप्ति होना बहुत सहज हो जाता है।
0: तो एक मॉर्निंग को फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपके रूटीन में क्या होना चाहिए, इस चीज़ की टिप यहाँ पर आपको सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ने दे दी है। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: मैंने ना अक्सर दो तरह के लोग देखे, एक जो जल्दी उठते हैं और एक जो लेट उठते हैं। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने अक्सर देखा है कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, सनराइज से पहले उठ जाते हैं, कुछ लोग बहुत लेट उठते हैं कि मतलब आधा दिन भी उनका कहो निकल गया हो, बट मैं ये जानना चाहता हूँ इन दोनों लोगों के नेचर में, मूड में या फिर एनर्जी में ऐसे क्या डिफरेंस होते हैं या क्या फर्क होता है?
1: जी बिल्कुल हो रहा है और बहुत, मैं कहूँ इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जिसका इसका असर है वो बॉडी से, माइंड से लेकर लाइफस्टाइल में जो हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा विकृत रूप में आ रहा है। और मैं कहूँ कि अगर हम जैसे भले हम आँख खोलते हैं, कई बच्चे 10 बजे सो रहे हैं तो सुबह 6 बजे उठते हैं, लेकिन कई बच्चे रात को 1 बजे सो रहे हैं और वो दिन में 12 बजे उठ रहे हैं। तो जब वो 12 बजे उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने ना सुबह की धूप देखी है, जबकि कई कहते हैं कि इट्स ऑफ नो यूज, हम उठते हैं तो हम अपना डाइट अच्छा लेते हैं, हम जिम चले जाते हैं, जिम इज अ वन थिंग एंड सूर्योदय का जो सनराइज है वो डिफरेंट है। आप जिम में ही हर चीज प्राप्त कर लें ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट कि मैं कहूँ पॉसिबल। तो हमें चीजों को अगर बेहतरीन अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने इमोशंस के लिए करना है तो अपने आप को नेचर से जोड़ने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नेचर में बहुत एनर्जी है, बहुत वास्ट, जो हम आज तक पूरा समझ भी नहीं पाए हैं। तो सुबह उठकर अगर मैं नेचर में जाती हूँ, चाहे मेरे पास 4 ही गमले हैं लेकिन मैं बाहर जाऊं, फ्रेश एयर में जाऊं, बर्ड चिपरिंग सुनो, तो उससे जो मेरे माइंड का जो ऊर्जा है या फ्रेशनेस होगी वो बहुत फर्क आएगा उससे।
0: तो देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव सुबह जल्दी उठने के या लेट उठने के सब आपको यहाँ पर पता चल चुका है। आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर जाना पसंद करेंगे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

कभी कभी ना फिल्म का नाम देखकर लगता है कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ही बोल दे कुछ तो गड़बड़ है दया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आज की पहली सिनेमा की अपडेट थोड़ी सी टॉक्सिक है। जी हाँ, बात हो रही है यश की टॉक्सिक की। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और विजुअल्स की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। कई लोगों को लगा कि फिल्म के विजुअल पर इतना फोकस कर दिया है कि कहानी रास्ते में कहीं छूट गई है। मतलब भाई नाम टॉक्सिक, एक्सपेक्टेशन ब्लॉकबस्टर वाली, और रिव्यूज में कहीं कहीं ऑडियंस बोल रही है ये कहानी थी या पेशेंस टेस्ट। अब यश के फैंस तो शायद कहेंगे भाई बस यश दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए, लेकिन बाकी ऑडियंस पूछ रही है स्टोरी भी दिखा दो। यानी टॉक्सिक ने रिलीज होते ही एक बात तो प्रूव कर दी है, नाम बिल्कुल सही रखा है, ओपिनियंस को लेकर पूरा माहौल ही टॉक्सिक बन गया है। आपको कैसी लगी टॉक्सिक?

0: कभी आपके मन में ये चीज की क्यूरियोसिटी हुई है, ब्रह्म मुहूर्त जो हम बोलते हैं उसके पीछे का क्या रीजन है? 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और मेरे साथ है सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, मैं अब आपसे ही जानना चाहता हूँ, अक्सर सुबह 4 बजे या 5 बजे वाले टाइम को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और अक्सर कहा जाता है उस टाइम पे जब हम उठते हैं तो हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं बाकी पूरे दिन के मुकाबले। उसी टाइम अगर आप प्रेयर करते हैं या कुछ याद करते हैं तो वो आपके साथ पूरे डे लॉन्ग या लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसके पीछे क्या स्पिरिचुअल रीजन है और क्या एक साइंटिफिक रीजन है, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज के समय में इस क्वेश्चन की बहुत जरूरत है, इसके जवाब की भी, कि ब्रह्म मुहूर्त, नाम भी कितना अच्छा दिया है मुहूर्त, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो मुहूर्त निकाल के करते हैं, है ना, कि मुहूर्त अच्छा है नहीं है, कुछ गलत हो जाए कहते हैं गलत मुहूर्त में हमने काम शुरू किया। अगर हम उस समय को साइंटिफिक रूप में भी अगर देखते हैं तो उस समय सारी निगेटिव एनर्जी सो गई होती है, निगेटिविटी। आप देखिए पेशेंट भी इनफेक्ट पूरी रात जगते हैं लेकिन मॉर्निंग में वो भी रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव एक वाइब्स उनको मिल रही है जो उनकी डिसीज को भी हील कर रही है, उनको रिलैक्स दे देती है। इसी तरीके से आप बाहर भी अगर देखेंगे नेचर में, वहाँ पर भी पक्षियों की आवाज़ हमें सुनाई देती है, हमें वो साउंड सुनाई देती है जिस साउंड से हमारे अंदर एक पीस अंदर तक जाता है। उस समय सारे लोग, कुछ लोग सोए हैं लेकिन उनकी जो इनर, जिसको कहा सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है अगर हम उठते हैं तो। और चारों तरफ, पहले तो हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हम देखते थे कि शुरू में जब हम उठते थे पहले तो कहीं मंदिरों में घंटियों की आवाज़ें हैं, तो कहीं अजान है, तो कहीं पर गुरुवाणी हो रही है, वो एक जो माहौल है वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है जो हमारी आत्मा को, हमारे अंदर तक वो फील होता है और उसी एनर्जी में अगर हम उठते हैं तो पूरे दिन वो एनर्जी वर्क करती है। उस टाइम पे हमने जैसा थॉट लिया है पूरे दिन उस थॉट का इम्पैक्ट रहता है।
0: तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको बखूबी यहाँ पर पता चल गया होगा ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जब आप मेडिटेशन करें तो आप यूनिवर्स से इजिली कनेक्ट हो सकते हैं? 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ और इस वक्त मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, हमने अक्सर ये सुना है ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत हाई होती है, तो हम जो एक सुप्रीम एनर्जी है या जो यूनिवर्स है उससे जल्दी कनेक्ट होते हैं, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये सच है भी कि नहीं है?
1: बिल्कुल करता है, क्योंकि सुबह का साई इस तरह के शब्द हमारे शास्त्र बताते हैं, सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हर चीज़ में अगर आप देखें चाहे वो ईस्ट है या वेस्ट है सुबह की बात की जाती है। भारत के शास्त्रों में भी सुबह प्रातः ये शब्द बहुत ऐसा माना जाता है कि एनर्जी अगर आपको लेनी है चाहे वो विशेष मेंटल लेवल पे, फिजिकल तो आएगी ही आएगी लेकिन मेंटल लेवल पे अगर अपने आप को एनर्जाइज करना है तो आपको जल्दी उठना है। और जल्दी में भी मैं कहूँ कई लोग 6 बजे सोचते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त जैसे आपने बात की वो उठ रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा ग्रास्पिंग एनर्जी माइंड की रहती है। ब्लॉटिंग पेपर, अगर माइंड काम करता है एज अ ब्लॉटिंग पेपर, वो सुबह करता है।
2: सुबह जैसा हम थॉट लेते हैं पूरा दिन हमारा वैसा ही जाता है। अगर हम सुबह सिर्फ ये भी कह दें कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है, तो वो खुशी की जितनी भी एनर्जी है वो हमारे पास आएगी और उसी तरीके से कार्य करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने आप को अफर्मेशन देना और पूरा दिन हम उस चीज़ को फिर फील करते हैं और रात में फिर हम उसको चेक भी करते हैं
1: है।
2: क्योंकि सुबह का सारा श्रेय जो है वो हमारे रात के सोने पर भी जाता है। अगर हम रात को रिलैक्स होकर के सो रहे हैं, सारे अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ करके और बिल्कुल रिलैक्स होकर के सोते हैं, तभी हम सुबह भी जल्दी उठ पाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं और हम रिलैक्स होते हैं।
0: सिस्टर, जिस तरह से आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है मुझे लग रहा है कि मेरे जो डाउट हैं वो तो यहाँ पर क्लियर हो ही गए हैं, बट जितने लिसनर्स हैं उनके डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे मॉर्निंग रूटीन पे ऐसे हमें मोटिवेट करने के लिए या उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन कल सुबह 6 बजे हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर बीके ज्योति और बीके प्रिया भी हमको फिर से ज्वाइन करेंगे। रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: खाना तो अच्छा होगा ना।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग एजी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं मेरे फरीदाबाद वालों? और देखो यार, हालचाल पूछने के लिए आ गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त आरजी अंजलि। और आप सुन रहे हैं मुझे अंजलि ऑन एयर पर रेडियो महारानी 89.6 एफएम से, जहाँ हर रोज सुबह 7 से 11 होती हूँ, बहुत सारी बातें लेकर आती हूँ, बहुत सारा एंटरटेनमेंट का डोज लेकर आती हूँ। लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? सुबह वाली चाय। तो सुबह वाली चाय की पहले से प्ले लीजिए। तो आज बातें थोड़ी चटपटी होने वाली है, लेकिन चटपटी बातों के साथ साथ और क्या होने वाला है? वेदर का अपडेट मिलने वाला है, फरीदाबाद की लोकल खबरें आप तक पहुंचने वाली है, साथ ही बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है सब कुछ आप तक लेकर आऊंगी। खुद को साइबर अटैक से कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी आपको बताऊंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फरीदाबाद की पहली भी पूछने वाली हूँ, आपकी दिमाग की बत्ती भी जलाने वाली हूँ। तो बस बहुत सारी बातें, एंटरटेनमेंट का बहुत सारा डोज आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम है, 4 घंटे आपके साथ रहने वाली हूँ। तब तक के

Eric Capita. Te Capita. इश्क सोच के गीता, देखी गीता। दिल देके दिल लैण दी लालच करी मैं भुलिया। जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता

ही है, पर साइंस कुछ और कहे। हर मेडिसिन की टेस्टिंग होती है, एक वक्त तक उसकी क्वालिटी की गारंटी होती है, उसके बाद असर कम हो सकता है और रिस्क बढ़ सकता है।

हेलो हेलो जी, तो चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। और अगर मौसम की बात करूँ ना, तो भाई देखिए मौसम का मूड आज थोड़ा सा मानसून वाला है। यानी कि आज आपको क्लाउड, कभी कभी आपको धूप भी मिलेगी और कभी मिलेगा आपको थंडरस्टॉर्म की एंट्री। तो सब कुछ आपको आज के दिन ही मिलने वाला है। और देखिए अगर आज के हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करूँ 34 डिग्री रहने वाला है। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है और विंड स्पीड भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है और ह्यूमिडिटी भी है आज 73%। तो बेसिकली डे आज मिक्स रहने वाला है, ह्यूमिड भी बहुत सारा मिलने वाला है। तो अपने साथ अम्ब्रेला

रेन कोट जरूर कैरी कीजिएगा, और अगर घर से बाहर जा रहे हैं ना तो मूड अच्छा करके जाइएगा, क्योंकि ये जो मौसम है ना ये आपका मूड थोड़ा सा खराब कर सकता है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सो हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन। एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट।

गुड फैट मिलता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज पनीर और मीट एग इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

हाँ जी, फरीदाबाद वालों कर लिया फेस्टिवल सेलिब्रेट, कर लिया रक्षाबंधन, मना ली ना, उसके बाद घेवर भी बहुत अच्छे से खाया होगा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रस मलाई, और किसी किसी ने ना तो छोले भटूरे भी बहुत ज्यादा खाए होंगे। तो भाई देखिए, ये जो ओवरडोज है ना, ये करना भूल जाइए, बिकॉज जो आज की कैलेंडर की तारीख है ना, ये हमें ये बताती है इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे के बारे में। कभी आपने सोचा एक छोटी सी गलती किसी की लाइफ के लिए बहुत बड़ी हो सकती है? और आज की तारीख हमें यही बताने आ गई है, बिकॉज आज हम लोग जो ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसका पर्पस सिर्फ यही है, ओवरडोज के रिस्क के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, प्रिवेंशन को इनकरेज करना, और ओवरडोज से इफेक्टेड फैमिलीज को सपोर्ट देना। और इस दिन की अगर मैं बात करूँ तो ये दिन ना अपने साथ एक मैसेज लेकर आता है। मैसेज ये है कि किसी भी मेडिसिन या फिर जितने भी सब्सटेंसेस है ना, उनको बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के बहुत ज्यादा लेना आपकी लाइफ के लिए रिस्क है। सो प्लीज इस रिस्क में ना अपनी लाइफ को मत डालिए। डॉक्टर की अच्छे से गाइडेंस के साथ ही, मेडिकल टीम की गाइडेंस के साथ ही, वो चीज आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। और इसी के साथ ही हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और एंजॉय कीजिए डे। और मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 FM, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बिट्रेयल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

हीरो बनने के लिए ना क्या सोचा जाता है, हीरो बनने के लिए हम सोचते हैं कि सिर्फ सिक्स पैक्स चाहिए। नहीं भाई नहीं, अगर आपने राजकुमार राव की जर्नी देखी होगी ना तो आपको पता चलेगा कि भाई टैलेंट बहुत बड़ी चीज है। टैलेंट ना हीरो के कैरेक्टर में जान डाल देता है। और आज मैं राजकुमार राव की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है राजकुमार राव का। भाई गुरुग्राम के हैं अपने, और अपने पास के शहर से हैं, बॉलीवुड में अपनी एक स्ट्रांग पहचान इन्होंने बनाई है। एक्टिंग जब करते हैं ना पर्दे पर छा जाता है, हर किसी रोल में ना क्या बखूबी अपना किरदार निभाते हैं, अपने फैंस के दिलों पर हमेशा राज करते हैं। फिर चाहे अगर इनकी मूवीज की बात करूँ, स्त्री की बात करूँ, न्यूटन की बात करूँ, शादी और फिर बरेली की बर्फी, ये सारे प्रोजेक्ट्स में ना इन्होंने बिल्कुल एक अलग शेड दिखाया है। भाई राजकुमार राव के कितने सारे शेड्स हो सकते हैं वो हमें इन पर्दों पर आकर पता चला है। कभी सीरियस हो जाते हैं, कभी कॉमेडी करते हैं, और कभी एकदम प्रेम वाले इंटेंस ड्रामा में घुस जाते हैं। तो इतने सारे कैरेक्टर निभाए हैं इन्होंने, और एक मिडिल क्लास कैरेक्टर में जब ये आते हैं ना तो भाई ऐसा लगता है ये जो गरीबी है ना वो हमसे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। और भाई इनकी अगर मैं खास बात की बात करूँ ना तो छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो रोल, छोटा हो चाहे फिर कोई बड़ा हो रोल, हर रोल पर ना एक अपना गहरा इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं जो

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी, तो आ गई हूँ आज का बिजनेस बस लेकर। और आज का बिजनेस वाला आइडिया ना खासकर उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये बोलते हैं बिजनेस करना है पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो भाई देखिए, आज का आइडिया आप लोगों के लिए, आपने करना क्या, जितने भी लोकल शॉप्स है ना उनके लिए व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना और मैनेज करने का काम है। क्योंकि आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे ऐसे नेबरहुड के बुटीक्स, बेकरीज, यहाँ तक कि सैलून है जिनके होम बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी को नजर ही नहीं आते। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन दिखाने के लिए ना कैटलॉग्स बनानी है। तो भाई आपने करना है क्या, उनके प्रोडक्ट्स की फोटो क्लिक करनी है, व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग सेट करना है, साथ ही वीकली ऑफर स्टेटस लगाने हैं और ऑर्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है। दैट्स इट। तो भाई देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, शॉप उनकी डिजिटल दुकान ऐप की यानी कि सर्विस ऐप। और आपने इसकी शुरुआत अपने एक दो लोकल बिजनेसमैन से कर सकते हैं, मंथली सर्विसेज चार्ज की। और देखिए इसके लिए ना आपके पास लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, फोन से भी ये काम हो जाता है। तो आज की बिजनेस टिप याद रखिएगा, जहाँ किसी की प्रॉब्लम है वहीं किसी और का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो भाई आज ही जाइए अपने एरिया में, देखिए कौन सी दुकान अच्छी चल रही है, बस ऑनलाइन थोड़ी सी वीक है, वहीं से आपका क्लाइंट मिल जाएगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलूंगी आपसे इस म्यूजिक ब्रेक।

चला मैं उधर चला, जाए कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये मुझको क्या हुआ। देखिए भाई फिसले नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी फिसले नहीं है, लेकिन हाँ फोन पर बात करते करते ना कोई कहाँ तक जा सकता है ये बता दिया है इस बंदे ने, जो कि जौनपुर से निकल पड़ा बनारस तक पैदल। और पैदल क्यों निकला, देखिए भाई ये ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे और गर्लफ्रेंड से बात करते करते ना इन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि भाई कहाँ जा रही है इनके कदम। और जब इनके कदम रुके ना, फाइनली जब इनका पेट्रोल खत्म हुआ, इनकी एनर्जी खत्म हुई, यानी कि इनकी जब बैटरी खत्म हुई ना फोन की, तब इन्हें पता चला ये भाई साहब जौनपुर से सीधा आ गए हैं बनारस तक। तो देखिए भाई अगर इश्क करना है ना तो इतना कीजिए, इतना डूब जाइए उसमें नहीं उस इश्क में, आपको ये ही ना पता हो कि भैया दिन है या रात है, आसमां है या जमीन है, मोहब्बत है या नफरत है। वाह वाह वाह, आजकल बहुत शेरो शायरी की तरफ जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा मूड बड़ा ही शायराना है आज। और जब मैंने ये सोशल मीडिया वाला स्यापा देखा ना, तो वाकई यार दिल ना ऐसे हो गया। फिर मैंने सोचा कि अंशलि यार तू कितनी ज्यादा अकेली है ना अपनी जिंदगी में, कि तेरे को एक कॉल भी नहीं आता, और कभी एक फोन आ भी जाए ना गलती से तो वो किसका होता है, वो होता है पता है आपको किसका कॉल होता है, मुझे कंपनीज कॉल करती है यार, एजेंसीज कॉल करती है। कई एजेंसी तो मुझे ये बोलती है कि मैडम आप प्लीज ये वाला लोन ले लीजिए, इन्हें कैसे बताएं कि गरीबी इतनी ज्यादा है कि मैडम अपना फोन का रिचार्ज नहीं कर पा रही, यहाँ पे लोन कैसे लेंगे। खैर देखिए यार मैडम के दुख दर्द तो बहुत ज्यादा है और इन दुख दर्द की तरफ जाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर बात करें ना इनकी, ट्रू लव का कार्डियो कर दिया इन्होंने अपने इश्क मोहब्बत का, अगर किसी को इजहार करना हो ना तो इनकी तरह शिद्दत वाला प्यार जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो रिश्ता है ना ये क्या कहलाता है पता नहीं। अब पता नहीं इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी, वो मोहतरमा इन्हें रिवर्ट बैक करेंगी नहीं करेंगी, यानी कि इनके साथ शादी करेंगी ना करेंगी, लेकिन हाँ उन मोहतरमा ने ना इनका लव में कार्डियो तो करा दिया। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ये वाला गाना, बिकॉज गाना मैं बहुत ही अच्छा बजाती हूँ, और देखिए अगर हमेशा बात करती रहूंगी तो गाने कैसे सुनाऊंगी ना, तो एंजॉय कीजिए गाना, मिलती हूँ ना थोड़ी देर में, और बस बने रहिए रेडियो 89.6 FM के साथ।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

इस चीनी जी ने ना हम सबको अपनी अपनी चाचियां याद दिला दी है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ ना चीनी की, तो हर जगह इन मोहतरमा के किस्से हैं इन दिनों। हर मार्केट में, हर दुकान में ना सिर्फ और सिर्फ ये लाइमलाइट बनी हुई है। तो भाई से भी देखो ना, हर कोई यही बोल रहा है कि यार अब चाय कैसे पियेंगे, बिकॉज चीनी हो गई है बहुत ज्यादा महंगी। और चीनी का असर ना सिर्फ हम जैसे लोगों पे नहीं पड़ रहा, ये जितने भी चोर कैटेगरी वाले लोग हैं ना, इन पर भी पड़ा है। तो भाई देखिए, एक ऐसा इंसिडेंट सामने आ गया है जहां पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ना कुछ चोर एक घर के अंदर घुस गए। अब चोर घुसे हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया होगा आप लोगों ने, चुराया होगा सोना चांदी? लेकिन नहीं जी, नहीं, इन्होंने चुरा ली 30 किलो चीनी। यानी कि 30 किलो चीनी की पूरी बोरी ये लोग उठाकर ले गए हैं अपने घर। और जब लोगों को पता चला ना कि भाई इस घर में चोरी हुई है, जाकर सामान चेक करते हैं कहीं गोल्ड तो नहीं ले गया कोई, कोई पैसे तो नहीं चुरा के ले गया। लेकिन देखिए भाई, गोल्ड अपनी जगह पर था, पैसे अपनी जगह पर थे, सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन जो मिसिंग थी ना वो थी चीनी जी। तो भाई देखिए, जो लोग ये कहते थे ना कि व्हाइट शुगर अच्छा नहीं होता है, व्हाइट शुगर की वजह से कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो भैया ले लीजिए, भगवान ने ऐसा तथास्तु बोला है ना कि चीनी के दाम हो गए हैं बहुत ज्यादा दुगने, तो अब चाय भी छोड़नी पड़ेगी, कॉफी भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन देखिए भाई, हम तो है कॉरपोरेट पब्लिक, यानी कि कॉरपोरेट मजदूर, सैलरी नहीं बढ़ाते ना, अब हमला होगा चीनी पर। तो देखिए यार, मैंने तो अल्टरनेट ढूंढ लिया है अपनी चीनी का, और आप भी ढूंढ लीजिए, और इसी के साथ एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ हैं अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

एज इंडियंस ना हम इंडिया को इतने खूबसूरती से नहीं समझ पाते हैं जितना कि फॉरेनर समझ पाते हैं। ये जो अपनी वाइब है ना इंडिया की बहुत यूनिक है, ये ना सबको अपना बना लेती है। और इसी के चलते मैं आज की एक बहुत ही स्वीट सी स्टोरी लेकर आई हूँ। पोलैंड की एक कॉन्टेंट क्रिएटर जिनका नाम डोमिनिका है, इन्होंने इंडिया को लेकर ना अपनी ओनली इन इंडिया लिस्ट शेयर की है। अब बताइए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया इंडिया में ना अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ना थोड़ी ही दूर पर मिलेगी एक चाय की टपरी, पैक्ड ट्रेन मिलेगी और हर जगह मिलेंगे आपको क्रिकेट खेलने वाले लोग। तो भाई देखिए हर फेस्टिवल को एनर्जी के साथ मनाया जाता है, इंटरेस्टिंग लाइट्स नजर आती है, ऐसा इन्होंने अपनी लिस्ट में मेंशन किया इंडिया को लेकर। और ऑनेस्टली ये सही भी है, हम इंडियंस के लिए ना ये सब डेली लाइफ की चीजें हैं, इसीलिए हम इन्हें इतने प्यार से नहीं देख पाते, इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन ये जो बाहर से आने वाले लोग है ना, यानी कि फॉरेनर्स है ना, ये सारी चीजें ना ये अपने देश में मिस करते हैं। और तब जब ये इंडिया आते हैं ना, इनका मन ऐसे गार्डन गार्डन हो जाता है, खासकर दिवाली वाले टाइम पर। तो भाई देखिए ये सारी जो चीजें है ना, ये इंडिया को खास बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आई लव माई इंडिया। भाई आई सीरियसली लव माई इंडिया। इंडिया में क्या कुछ नहीं है, इंडिया में सब कुछ है। अगर हम एक्सप्लोर करें ना तो सबसे खूबसूरत देश है इंडिया। तो देखिए मैंने तो बता दिया कि मुझे इंडिया के बारे में क्या पसंद है, मुझे इंडिया की हर एक जगह पसंद है। अब आपको क्या पसंद है और कौन सी ऐसी वाइब है जो इंडिया को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है, पता है ना बताने के लिए कहाँ आना है? तो फटाफट चाहिए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर हमें ये बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं इंडिया को। और साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

दिया। लेकिन अब डिजिटली अरेस्ट का मतलब ये है कि किसी ने आपको वीडियो कॉल पर आपको बंद कर आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके वॉशरूम में, कहीं भी रख दिया हो। सो भाई देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है, फोन पर कोई भी पुलिस ऑफिसर का कॉल अगर आपको आता है और वो आपको ये बोलता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, तो प्लीज मत घबराइएगा, ये एक स्कैम हो सकता है। बिकॉज रिसेंट केस की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट केसेस में स्कैमर पुलिस या फिर कोई भी ऑफिशियल बैंकर बनकर आते हैं, लोगों को कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं, आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो इलीगल है। और एक रिसेंट केस ऐसा ही आया है अहमदाबाद से, जहां पर 75 साल की जो एक महिला थी उनके साथ स्कैम हुआ है 55 लाख रुपए का। सो भाई देखिए, सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी आपको फोन करके धमकी देता है, डराता है कि आपके अकाउंट से कोई इलीगल ट्रांजेक्शन हुई है, तो पहले जाके अपने अकाउंट से कंफर्म कीजिए। एंड देन अगर कोई आपको बोलता है ना कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो भाई प्लीज वो फोन रख दीजिए और जाकर साइबर सेल में कंप्लेंट कीजिए। और रूल सिर्फ सिंपल सा है, कोई भी जेन्युइन ऑफिसर आपको कभी भी वीडियो कॉल नहीं करेगा, कभी भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक मंत्र लेकर आई हूँ, कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो फटाफट से जाके 1930 पर अपनी रिपोर्ट लिखवाइए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हाँ जी, आज डू यू नो से ना सीधा चलिए डिड यू नो पर चलते हैं। और यार मैं आज बात करूँ ना डिड यू नो की, तो बहुत प्यारा सा थॉट लेकर आई हूँ। और मतलब ये थॉट ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग ना अक्सर यही सोचते हैं कि यार इस इंसान के बारे में कैसे पता चला है कि एक अच्छा इंसान है या नहीं है, कोई फेक बंदा तो नहीं है। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका मैं लेकर आ गई हूँ। तो अगर किसी इंसान को समझना हो ना, तो ये जरूर देखिएगा कि वो जो आपके आसपास जितने भी डॉग्स है ना, सिर्फ ब्रीड्स की बात नहीं कर रही, जितने भी स्ट्रे डॉग्स है ना, उनके साथ कैसा बिहेव करता है। बिकॉज एक पॉपुलर सेइंग है जिसमें ये कहा गया है, इफ अ मैन लव्स अ डॉग ही इज अ गुड मैन, एंड इफ अ डॉग लव्स अ मैन ही इज अ गुड मैन। सो भाई देखिए, यहाँ पर अगर एक इंसान किसी जानवर से प्यार करता है, किसी डॉग से प्यार करता है, तो वो अच्छा इंसान है। लेकिन अगर बदले में कोई जानवर, कोई डॉग उसे प्यार करता है ना, फिर सोचेगा वो कितना प्यारा इंसान होगा। सो भाई इसी थॉट के साथ ना, एक सिंपल सा मतलब ये है, जितने भी डॉग्स है ना, जितने भी स्ट्रे डॉग्स है, उनके साथ काइंडनेस और केयर दिखाना इंसान के नेचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। बिकॉज यहाँ पर इसका लॉजिक ये है, कभी आपने अगर डॉग्स देखे हो ना, तो वो आपके पास बिना किसी मतलब के आते हैं। भले ही आपका आउटफिट खराब हो, आपका मूड खराब हो, आपके पास पैसे ना हो, आप सुंदर नहीं दिखते हो, जैसा कि आप समझते हो कई बार, लेकिन डॉग्स को ना इन सारी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। वो आपको हर कंडीशन में अनकंडीशनल लव करते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है, अगर कोई डॉग आपको आकर प्यार करता है ना, तो समझिए कि आप कितने प्यारे इंसान हैं। और यही चीज ना अपने अंदर से कभी खत्म मत होने देना। और पता है, दूसरों से प्यार करना, दूसरों को प्यार का इजहार करना, सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके खुद की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत प्यारा होता है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक

जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी, फरीदाबाद वालों बहुत अच्छे से फरीदाबाद को जानते हो ना। चलिए फिर ले लेते हैं आपका टेस्ट, यानी कि चलिए अब आपकी दिमाग की बत्ती जलाने का टाइम आ गया है और अब मैं लेकर आ गई हूँ फरीदाबाद की पहेली। सो भाई बात करते हैं आज की पहेली की। ना मैं कोई मार्केट हूँ, ना मैं कोई फोर्ट, लेकिन मेरे नाम से ही जुड़ा है तुम्हारे शहर का नाम। सदियों पहले एक सूफी संत यहाँ आए और उन्हीं की याद में आज भी एक पुरानी जगह मौजूद है, और बताओ मैं कौन हूँ। सो भाई अगर आप फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हैं ना, तो फटाफट से आ जाइए अपने जवाब लेकर। और आपको पता है ना अपने जवाब लेकर कहाँ आने, आपको मैसेज टाइप करना है, रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर जाना है, वहाँ पर मैसेज भेजना है, और मैं फटाफट से देखती हूँ किसके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और कौन फरीदाबाद को कितने अच्छे से जानता है। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ना ये ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

बहुत सारी बातें करती हूँ ना मैं, सुबह 7 बजे जाती हूँ और कब जाकर 11 बज जाते हैं मुझे खुद पता नहीं चलता। और बातें बातें करते ही ना कभी कभी ना इतने अच्छे गाने होते हैं कि मैं बीच में गाने भी बजा देती हूँ। तो भाई देखिए, बातें तो मैं करती ही रहूंगी, लेकिन ना आज एक छोटी सी बात कर लेते हैं, फील गुड स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं ना, अच्छाई छोटी हो या फिर बड़ी, किसी ना किसी के चेहरे पर स्माइल जरूर लेकर आती है। और आज की फील गुड स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटी सी काइंडनेस ने एक स्ट्रेंजर का पूरा दिन बना दिया। और सबसे ब्यूटीफुल बात पता क्या है, इसके बदले ना किसी ने कुछ मांगा भी नहीं। तो भाई देखिए, कभी किसी के लिए आपने डोर होल्ड किया है? जब आप कभी किसी के लिए डोर होल्ड करते हो ना, तो सामने वाला आपको थैंक यू कहकर जाता है। और जब वो थैंक यू कहता है ना, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। बस वही स्माइल ना आपका दिन बना, बस वही स्माइल ना एक काइंडनेस का जेस्चर। और कभी आपकी जेन्युइनली फील किया है कि किसी ने आपको ये पूछा हो कि आप ठीक हो, और जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की, तब लगा होगा ना कि हाँ कोई मेरा भी है। तो भाई यही सारी चीजें हैं, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हमारी जिंदगी में ना हमें स्ट्रेंथ, हमें होप और पॉजिटिविटी देती है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में गुड वाइब्स बनी रहे, तो आपको बताया ना क्या करना है, आपको भी ये गुड वाइब्स सामने वाले इंसान की जिंदगी में लेकर आनी है। यानी कि एक छोटी सी चीज कीजिएगा, जब आप ऑफिस जा रहे हैं ना, और ऑफिस जा रहे हैं, जो डब्बे में कुछ अच्छा लेकर आया ना, तो एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा अपने कॉलीग्स के लिए, अपने ऑफिस वाले पगलू फ्रेंड्स के लिए। और साथ ही अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते ना, तो यार किसी को लिफ्ट दे देना। बस ये छोटी सी चीजें आज कर देना, और फिर देखेगा ये जो गुड वाइब्स आप स्प्रेड कर रहे हो ना, ये यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देगा। सो इसी को कहते हैं अच्छा करो अच्छा मिलेगा। और एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कितने शॉट्स पिए नागिन, फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं, नाचे तू जैसे नागिन।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हाँ जी। और भाई पहले ही लेट हो रहे थे और अब ट्रेन भी नहीं मिल रही ना, कैसे मिलेगी जब अपडेट सुनकर ही नहीं जाओगे घर से। तो भाई देखिए, जितने भी फरीदाबाद से ट्रेन पकड़ने वाले पैसेंजर्स है ना, ये अपडेट उनके लिए है खासकर। सो भाई ये अपडेट है आपके काम की, स्टेशन जाने से पहले ना एक बार जरूर सुन के जाइएगा, बिकॉज फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे ना ऑन गोइंग जितना भी वर्क है ना, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 45 दिन की ट्रेन सर्विस जो है इफेक्ट होगी। रिपोर्ट्स की अगर बात करूं तो मैं, 9 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, जिसमें से 20 ट्रेन फरीदाबाद स्टेशन पर स्टॉप नहीं करेगी। सो अगर आप जा रहे हैं तो अपनी ट्रेन नंबर जरूर चेक करके जाइए कि लिस्ट में है या नहीं है, और अगर है तो आपको पता है क्या करना है, अपना रूट चेंज करना है, अपना व्हीकल चेंज करना और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना है बिना किसी डिले के। सो अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है पहले ही एक बार अपडेट चेक करके जाए, और निकलने से पहले ना यार मूड अच्छा किया करो। जब मूड अच्छा होता है ना तो सारे काम अच्छे होते हैं। सो अगर आपका ट्रेवल प्लान है आजकल में कहीं जाने का, सो स्टेशन पहुंचने से पहले ना अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्केड्यूल एक बार स्टॉपेज चेक जरूर कर लीजिएगा, वरना भैया ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकिन आपकी प्लानिंग प्लेटफॉर्म पर धरी की धरी रह जाएगी। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: One wine, please.

किसी को बुलाना कितना आसान है ना, मतलब अब तो खरीदा भी जा सकता है, पर क्या ऐसी दुनिया में तुम मुझे याद रखोगे हमेशा के लिए?

0: सच अपने बारे में।
1: ओए मेरा चार्जर कहाँ है?
2: जो मेरा चार्जर था कल।
1: अरे अभी इमरजेंसी है, 1% बैटरी है।
2: अच्छा जब मेरी 1% थी तब तो तू बोला था कि भगवान का नाम ले।
1: यार चार्जर दे दो।
2: एक काम कर।
1: क्या?
2: कल जो मेरी चॉकलेट खाई थी ना उसकी शोक सभा मना ले।
1: मतलब चार्जर नहीं मिलेगा?
2: मिलेगा, रेंट पर।
3: ताराना दिसक या जन्न खो जावे तनो संग रखना।
4: भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। चीजें घर की होती है लेकिन ओनरशिप पर्सनल होती है। इसी प्यारी तकरार और बेशुमार प्यार के साथ 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षा।

हाँ जी, वापस आ गई मैं। बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन बातें करने से पहले ना यार, मैं ये जानने वाली हूँ कि आखिर कितना फरीदाबाद को जानते हो और क्या आंसर दिया है आपने फरीदाबाद की पहेली का। तो भाई बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं, चलिए भाई पहला मैसेज उठा लेते हैं। और पहला मैसेज है श्रेया का। सो श्रेया ने बताया है, अंजलि जिस पहेली की आप बात कर रही हो ना, वो पहेली बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। उस पहेली का जवाब है बाबा फरीद की मजार। सो भाई अगर श्रेया मैं बात करूँ ना आपकी, आपने बहुत सही आंसर दिया। और अगर मैं इस पहेली के जवाब की बात करूं तो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। फरीदाबाद का नाम ही शेख फरीद यानी कि बाबा फरीद से जुड़ा माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक उन्होंने 17th सेंचुरी में यहाँ पर सेटलमेंट स्टेब्लिश की थी और उन्हीं के ऑनर में बना दिया गया ये टॉम। सो भाई फरीदाबाद की इम्पोर्टेंट हेरिटेज अट्रैक्शन में से एक है बाबा फरीद का मजार। सो अगर आप नहीं गए हैं तो जरूर जाएगा और फरीदाबाद को ना यार अच्छे से जानो, अपना ही तो शहर है ना। और अपने शहर को आप जितना प्यार दोगे ना, अपना शहर आपको उतना ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। सो इसी के साथ एंजॉय कीजिए ना ये ट्रैक, मिलता है कुछ ही देर में।

0: तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।
1: लिखा मेरे

बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे

हेलो हेलो फरीदाबाद। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को ना अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन कई बार ना जब ये वायरल जैसी चीज़ें आ जाती है ना हमारे आसपास, तो हम ना जाकर भी ना बीमार हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए ना आज का मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ। आप सभी को पता है कि स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है इन दिनों, जहाँ पर फीवर और कफ ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग ये है कि इससे ना हमारा हार्ट भी इम्पैक्ट होता है। तो भाई दिल्ली में H1N1 केसेस बढ़ने के बीच ना तो ये डॉक्टर ने एक एडवाइजरी जारी किया, और इस एडवाइजरी के जारी ना कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल सकता है और हो सकती है एक्स्ट्रा हार्ट इन्फ्लेमेशन। तो जितने भी हार्ट डिसीज या फिर हाई बीपी वाले लोग है ना, इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपको कफ है, कोल्ड है, आपको फीवर आ रहा है, तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलिएगा, उन्हें बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। और अगर आपको लगता है ना कि आपको हैवी ब्रीदिंग हो रही है और सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भी इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं है, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और अच्छा स्लीप आपको जरूरत है अपनी बॉडी को प्रायोरिटी बनाने की, अपने हर एक सिम्टम्स को समझने की, डॉक्टर से मिलने की, और हाँ टाइम पर उस बीमारी इलाज कराने की। तो इसी के साथ एंजॉय कीजिएगा आज का दिन और एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

हाँ जी, देखिए भाई बातें बहुत सारी हो गई हैं और बातें करते करते ना अभी मेरी नजर इस घड़ी पर पड़ी तो पता चला कि 11 बजने वाले हैं। सुबह 7 बजे आई थी और 11 बजने वाले हैं, यानी कि आज मैंने बहुत सारे गप्पे शप्पे आपके साथ लड़ाए हैं, बहुत सारी अपडेट्स आपको दी हैं, इंफोटेनमेंट का डबल डोज मैं लेकर आई थी। तो भाई अभी ये घड़ी इशारा करे कि अंजलि बस बहुत हुआ बेटा, अब चलिए यहाँ से, बिकॉज आज जाएंगे तभी तो कल आऊंगी ना। सो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। और जाते जाते ना एक बार ये जरूर बता देती हूँ कि आज आखिर मेरे टिफिन में क्या है। सो भाई आज भी मैं बिना टिफिन के आई हूँ और आज मैं करने वाली हूँ चीट मील। सो कभी कभी ना खुद को एक रिवॉर्ड दे देना चाहिए। इस पूरा वीक ना मैंने ट्राई किया था कि कोई जंक नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस कहाँ रख पाती हूँ ना, तो इस बार भी नहीं रख पाई थी। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो यही होगा मेरे साथ। तो अभी फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना टिफिन एंजॉय करूंगी यहाँ से जाने के बाद, एक गर्मा गर्म कॉफी पीने वाली हूँ और फिर कल आऊंगी एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वाइब के साथ। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो महारानी पर शानदार सा ट्रैक जो है खास आपके लिए। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वो कहावत आपने सुनी है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और चार साल बाद मेरी भी ऐसे होम ग्राउंड पे वापसी हो चुकी है, यानी कि वापसी में आ चुका हूँ रेडियो महारानी पे। और जब मैं छोड़ के गया था ना, तब में और अब में बहुत चीजें चेंज हो चुकी है फरीदाबाद के अंदर भी और रेडियो में भी। जब मैं पहले था तब हम एक डिजिटल रेडियो हुआ करते थे, और अब हम आपके कार सेट्स यानी कि कार में जो आपके रेडियो है वहां तक पहुंच चुके हैं, आपके फोन में अगर आप फ्रीक्वेंसी ट्यून इन कर लेते हो हम वहां तक पहुंच चुके हैं। तो आप समझ रहे हो हम फ्रीक्वेंसी रेडियो भी हो चुके हैं। तो ये चार साल के जो बदलाव है ना, ये आपकी लाइफ में मेरी लाइफ में बहुत कुछ अलग चीजें लेके आए हैं, और इसीलिए मैं एक ब्रांड न्यू शो और एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट अब रेडियो पे आपके लिए लेके आया हूं।

नारी नंबर वन, और ये बात बिल्कुल सही है कि नारी हर चीज में नंबर वन है, चाहे आप उसको कोई भी काम दे दीजिए। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और ये जो आपने अभी शो का इंट्रो सुना है, यही शो है जो आपको रोज 11 से 2 यानी कि तुषार के साथ सुनने मिलने वाला है, ओनली ऑन रेडियो महारानी, जहां पर हम नारी की बात करने वाले हैं। कुछ नारी हमारे साथ जुड़ेंगी जो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी, कैसे उन्होंने अपने एक छोटे से बिजनेस को इतने बड़े स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया, या कैसे वो इंडिया को टैलेंट लाला के ढूंढ ढूंढ के दे रही हैं, या फिर वो खुद एक ऐसा टैलेंट है जो इंडिया में कभी किसी ने नहीं देखा। जो चीजें हमने वेस्ट सोची, नारी ने उससे इतना ब्यूटीफुल कुछ नया करके दिखा दिया, कुछ नया इन्वेंट करके दिखा दिया। हमने एक टाइम पे सोचा था आर्मी मिलिट्री, और यहाँ पर नारी क्या करेगी, वहां पर भी नारी ने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्विस्ट, अलग अलग पहेलियां, अलग अलग किस्से जो नारी यहाँ पर खुद लेके आने वाली है, और कुछ उनमें से किस्से कहानियां मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो ऐसी ये जर्नी जो है वो बहुत सारी फीमेल एम्पावरमेंट को लेके, यानी मैं बोलूँ वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं रोज। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे आके रेडियो महारानी के वहां पर DM करिए कि मैंने ये चीज इस ईयर में करी, या ये अभी भी इस चीज को कंटिन्यू कर रही हूं, और आपको हम इन्वाइट करेंगे हमारे स्टूडियो नारी नंबर वन शो पे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर

0: हेलो रेडियो महारानी से मैं हूँ आरजे मॉर्निंग और शो चल रहा है।
1: अरे अरे अरे अरे, अब वो शो नहीं चल रहा है। वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए हैं गुरु।
0: सब बदल गए।
1: यस, अब क्योंकि यहाँ पर एक नया आगाज की शुरुआत हो चुकी है। नारी नंबर वन की शुरुआत हो चुकी है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और नारी नंबर वन में ये जो पुरुष आए हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कैसा लग रहा है आपके शो को, जो मैंने बिल्कुल आगे कब्जा लिया है।
0: भैया यार देखो, अपना बड़े मजे से बैठा जा करके कि शो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत ही बिगाड़ दी। और वैसे बिगाड़ी नहीं, एक्चुअली बात यह है कि अब से यहाँ पे ये कब्जा जो है आज तुषार का ही रहने वाला है।
1: और ये कब्जे के पीछे एक और ऐतिहासिक कहानी है। जैसे हम नारी की बहुत सारी बात तो कर ही रहे हैं, बट आप यहाँ से जो अलविदा लेके जा रहे हैं इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है, कहाँ चल दिए? हम एंटर लिए हैं और आप टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं, कहाँ का इंसाफ है बताइए।
0: कोई आया है तो कोई जाएगा भी,
1: क्या कह रहे हैं? कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बड़ा जरूरी होता है। ये जो मूवीज ने हमारे ऊपर इफेक्ट डाला है उसका इफेक्ट यहाँ पर हमको दिख रहा है। बट एक नए स्टार्ट की और आप जो मुड़े हैं, तो बेस्ट विशेस पहले तो मेरी तरफ से। और ये जो एक नया स्टार्ट हुआ इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इसके लिए तुम्हें भी बेस्ट विशेस है। और नारी नंबर वन कुछ नया इंटरेस्टिंग लेकर के आ रहा है रेडियो महारानी, जहाँ पे बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा और सीखने के साथ साथ कुछ नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा।
1: वो लोग आप बेचते रहेंगे ना बीच-बीच?
0: हाँ बिल्कुल बेचते रहेंगे यार।
1: मतलब ये डील हम यहाँ पर फाइनल कर लेते हैं कि वो लोग जो है वो इनकी तरफ से भी आते रहेंगे। ऐसी कोई नारी जिन्होंने हमारी सोसाइटी में ऐसा ड्राफ्टिक चेंज ला दिया है या कंटिन्यूअस लाती जा रही है, उनको हम यहाँ पर इनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, इनसे मिलवाएंगे, ताकि और जो हमारी वंडरफुल नारीज हैं वो भी थोड़ी सी मोटिवेट हुएं और अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

0: अब 4 साल बाद मैं घर वापस आया हूँ, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे को मिली हैं। वो होता है ना, नई बहू आ रही है, उसको चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया जाता है, वही वाला हिसाब किताब यहाँ पर हुआ है गुरु मेरे साथ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ आरजे मोनिक भी हैं। ये 4 साल में क्या क्या बदलाव हो गए भैया? रेडियो पे हमने एक बदलाव देख लिया है, पहले सिर्फ हम डिजिटल रेडियो थे, अब हम फ्रीक्वेंसी पे भी आ गए हैं, तो अब हम लोगों के कार पे भी सुनाई देने लग गए हैं कि आते जाते। एक तो ये चेंज, बट फरीदाबाद में ऐसे क्या चेंज है जो मेरे को अपने अंदर थोड़े से अडॉप्ट कर लेने चाहिए इजिली फरीदाबाद में ढलने के लिए?
1: हाँ, फरीदाबाद के चेंजेस की बात करो, देखो यार वैसे तो कुछ चीजें डेवलप भी हुई है जिनको हम कहें, आप देखा होगा फरीदाबाद में स्पेशली NIT 5 की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे नए चौक बनते नजर आए, कहीं नमस्ते चौक है तो कहीं मेक इन इंडिया चौक, कहीं किताब चौक है, तो कुछ नए ऐसे चौक बनते नजर आए जहाँ पे बहुत से सेल्फी पॉइंट्स भी बने हैं और वहां जाकर के आप उस खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सेल्फी पॉइंट को खूबसूरती एंजॉय कीजिए, उसे खराब मत करना।
0: ये जो बात आपने कही, बट इसके अलावा मैंने एक डेवलपमेंट और देखा है, अगर हम वर्ल्ड स्ट्रीट की तरफ जाएंगे तो वो गोल सा बड़ा सा इन्होंने जाइंट व्हील क्यों बना दिया? गया तो नहीं
1: वो देखिए, देखने के लिए जाइंट व्हील जरूर कह सकते हैं, लेकिन वहां पे कुछ स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ नया फरीदाबाद को मिलने वाला है। वहां पे बहुत एक बढ़िया सी बिल्डिंग ही बन रही है जो जाइंट व्हील की शेप में बनी है।
0: और बहुत सारे चेंजेस मैंने ऐसे भी देखे हैं, फरीदाबाद की रोड 4 साल में थोड़ी सही हो गई है पहले के मुकाबले, मेरे को ऐसे लगा है गड्ढे हड्ढे थोड़े कम मिले हैं।
1: हाँ, गड्ढे कम मिले हैं, लेकिन वो बस थोड़े से ही कम मिले हैं,
0: या तो मेरी बाइक ऑफ रोडिंग है इसलिए पता नहीं चल रहा है। ये भी दो लॉजिक हो सकते हैं कि क्या है। और एक जो भाई इन्होंने गेट लगा दिया, अंडरपास पे गेट लगाया हुआ जो कॉन्सेप्ट है, वो मैंने फरीदाबाद में ही आके देखा है।
1: क्योंकि देखो यार, पब्लिक तो मानती नहीं, तो क्या है अपने को ही, यानी कि डिपार्टमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम तो सुधरने नहीं वाले,
0: स्मार्ट सिटी के स्मार्ट डिपार्टमेंट की पब्लिक नहीं मानेगी, बट हमें क्या करना है, स्मार्ट सॉल्यूशन
1: देना है।
0: तो उन्होंने ये स्मार्ट सॉल्यूशन हम लोग को दे दिया था। बट ऐसे बहुत सारे और चेंजेस हैं जो आप हमको डीएम पे आगे बता सकते हैं अगर हम कहीं पर मिस कर रहे हैं। इट्स आरजे तुषार के नाम से मिल जाऊंगा, रेडियो महारानी के अकाउंट्स पे बता सकते हैं, या फिर अभी इनको भी बता सकते हैं, अकाउंट बताइए भैया।
1: बिल्कुल, आरजे मोनिक के नाम से आप सोशल मीडिया पे बता सकते हो और हमको फॉलो भी कर सकते हैं।
0: हाँ, जो आपका मन करे वहां पर आके हमको बताइए, हमको फॉलो करिए, और फिलहाल के लिए 89.6 रेडियो महारानी सुनते रहिए कुछ हटके।

चला मैं उधर चला, जाए कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये मुझको क्या हुआ। देखिए भाई फिसले नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी फिसले नहीं है, लेकिन हाँ फोन पर बात करते करते ना कोई कहाँ तक जा सकता है ये बता दिया है इस बंदे ने, जो कि जौनपुर से निकल पड़ा बनारस तक पैदल। और पैदल क्यों निकला, देखिए भाई ये ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे और गर्लफ्रेंड से बात करते करते ना इन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि भाई कहाँ जा रही है इनके कदम। और जब इनके कदम रुके ना, फाइनली जब इनका पेट्रोल खत्म हुआ, इनकी एनर्जी खत्म हुई, यानी कि इनकी जब बैटरी खत्म हुई ना फोन की, तब इन्हें पता चला ये भाई साहब जौनपुर से सीधा आ गए हैं बनारस तक। तो देखिए भाई अगर इश्क करना है ना तो इतना कीजिए, इतना डूब जाइए उस इश्क में, आपको ये ही ना पता हो कि भैया दिन है या रात है, आसमां है या जमीन है, मोहब्बत है या नफरत है। वाह वाह वाह, आजकल बहुत शेरो शायरी की तरफ जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा मूड बड़ा ही शायराना है आज। और जब मैंने ये सोशल मीडिया वाला स्यापा देखा ना तो वाकई यार दिल ना ऐसे हो गया। फिर मैंने सोचा कि अंजलि यार तू कितनी ज्यादा अकेली है ना अपनी जिंदगी में, कि तेरे को एक कॉल भी नहीं आता, और कभी एक फोन आ भी जाए ना गलती से तो वो किसका होता है, वो होता है पता है आपको किसका कॉल होता है, मुझे कंपनीज कॉल करती है यार, एजेंसीज कॉल करती है। कई एजेंसी तो मुझे ये बोलती है कि मैडम आप प्लीज ये वाला लोन ले लीजिए, इन्हें कैसे बताएं कि गरीबी इतनी ज्यादा है कि मैडम अपना फोन का रिचार्ज नहीं कर पा रही, यहाँ पे लोन कैसे लेंगे। खैर देखिए यार मैडम के दुख दर्द तो बहुत ज्यादा है और इन दुख दर्द की तरफ जाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर बात करें ना इनकी, ट्रू लव का कार्डियो कर दिया इन्होंने अपने इश्क मोहब्बत का, अगर किसी को इजहार करना हो ना तो इनकी तरह शिद्दत वाला प्यार जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो रिश्ता है ना ये क्या कहलाता है पता नहीं। अब पता नहीं इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी, वो मोहतरमा इन्हें रिवर्ट बैक करेंगी नहीं करेंगी, यानी कि इनके साथ शादी करेंगी ना करेंगी, लेकिन हाँ उन मोहतरमा ने ना इनका लव में कार्डियो तो करा दिया। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ये वाला गाना, बिकॉज गाना मैं बहुत ही अच्छा बजाती हूँ, और देखिए अगर हमेशा बात करती रहूंगी तो गाने कैसे सुनाऊंगी ना, तो एंजॉय कीजिए गाना। Best of Anjali.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

है, यहाँ की जो नारी है वो सिर्फ अपने आप को लिमिट नहीं कर रही है, वो लिमिटलेस बनने की यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है। और कई नारी ऑलरेडी बन भी चुकी हैं जो हमारे साथ इस जर्नी में अपनी स्टोरीज आगे शेयर करेंगी। बट इसके अलावा फरीदाबाद में और क्या क्या बदला है, देखिए दिल्ली से मुंबई वाला एक्सप्रेस वे बन गया है, ये मेरे लिए एक नया था जो उस टाइम तक जिसका नामो निशान नहीं होता था। बट एक ऑटो वालों का एटीट्यूड बदल गया है भाई। फरीदाबाद में पहले ऑटो से आप बात करो तो वो बड़े आराम से बात करके कि आइए भैया कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक जाना है, अरे हम छोड़ देंगे, रास्ता नहीं है तो भी हम आपको एक सटीक रास्ते तक आपको पहुंचा देंगे। बट अब जाना आपको वहां, हम नहीं जा रहे भैया, नहीं लेके जाएंगे, आपको जाना है पूरा बुक करके चलिए, यहां सवारी वाला नहीं लेके जाएंगे। भाई क्या कर रहे हो, फरीदाबाद के ऑटो वाले बहुत अच्छे हुआ करते थे 4 साल पहले, बट ये जो एकदम से तख्ता पलट एटीट्यूड आया है इसके पीछे की क्या कहानी है मुझे खुद नहीं पता है। बट आपके साथ भी ऐसे कोई एटीट्यूड वाला चेंज हुआ है पिछले 4 साल में तो वो क्या है ये मुझे मत बताओ, कुछ चीजें अपने तक भी रखनी होती है, हर चीज मुझे नहीं बतानी होती है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स

तो भैया किस नारी ने ऐसा कुछ काम कर दिया है कि वो आज हमारी सोशल स्पॉटलाइट में आने वाली है? 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और आज हमारी स्पॉटलाइट में है दीक्षा जायसवाल। अब इन्होंने ऐसा क्या करा जो ये स्पॉटलाइट में आ गए? बेसिकली स्पॉटलाइट वो है जो सोशल मीडिया पे अपने आप को ट्रेंड पे ले आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम यहाँ पर स्पॉटलाइट में लेंगे। फिलहाल आज का जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है और ये चेंज हर एक नारी धीरे धीरे कहीं ना कहीं करती रहती है और कभी भी किसी मेल के सामने ये आने नहीं देती है। हमारे घर में मम्मी की भी आदत होती है ना पैसे छुपा के रखने, कई बार तो चावल के डिब्बे के अंदर छुपा देती है, कहीं किचन के किसी जार के अंदर छुपा देती है ताकि वो सेविंग हो पाए। वैसे ही दीक्षा ने भी यूपी के अंदर सेविंग करनी शुरू की, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और वहां पर इन्होंने ये सोचा था कि ये पैसा जो है वो बचाएंगी, उससे कार लेंगी और उससे गोल्ड लेंगी, बट उससे कई गुना बड़ी चीज इन्होंने ले लिया। इन्होंने 2017 में एक पिगी बैंक बनाया था जिसको हम गुल्लक भी कहते हैं, उसमें पैसा डालना शुरू करा और 9 साल बाद इन्होंने जब वो पैसा निकाला तो वो इतना इन्होंने कलेक्ट कर लिया था कि उससे एक जमीन का हिस्सा यानी कि प्लॉट खरीद लिया इन्होंने। और हम इमेजिन कर रहे थे ना चलो कार आ जाएगी, चलो हम गोल्ड आ जाएगा, बट इतना कलेक्ट हो गया कि उससे पूरा का पूरा जमीन ले लिया इन्होंने। अब वो लैंड इनके नाम पे है, अब उस लैंड पे ये घर बनाए, खेती करे या फिर और कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करें, मतलब एक और एंटरप्रेन्योर वुमेन बनने की यहाँ से तैयारी शुरू होती ही मेरे को नजर आ रही है। बट ये सेविंग करने का जो नया तरीका इन्होंने बताया है कि एक साथ बहुत पैसे नहीं निकाल पा रहे तो अपनी वो जो पिगी बैंक वाली आदत थी या फिर वो जो आपकी गुल्लक में 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये कि कहीं से भी आ रहे हो जितना पैसा चिल्लर में बच रहा है वो उसमें डालते रहो तो एक दिन वो बड़ा अमाउंट बन जाएगा अंटिल फिर से डिमोनेटाइजेशन ना आ जाए और वो करेंसी बंद ना हो जाए। मुझे तो इस चीज़ का डर लगता है पैसा कलेक्शन करने में, बट आपको क्या लग रहा है इसके बारे में मेरे को बखूबी बताइएगा। इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा इट्स आरजे तुषार के नाम से। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

इंस्टाग्राम पे एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। अब आप सोच रहे होगे ना, एक ऐसी बात कर रहे हो, लॉकडाउन तो शहर में लगता है, इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन कैसे लगने वाला है। देखिए, इंस्टाग्राम के जो ओनर है उन्होंने खुद आके ये चीज अनाउंस करी है, तो मैं इधर उधर की कोई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। और ये जो लॉकडाउन है ये लगने वाला है रात के 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। मतलब इंस्टाग्राम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। और ये इसलिए कि लोगों की स्लीप साइकिल जो है ना वो खराब हो रही है। वो 12 बजे के बाद इंस्टाग्राम चलाना शुरू करते, 2 बजे 2:30 बजे तक चलाते ही जा रहे, रिलीज स्क्रॉल कर रहे। तो इसलिए कंट्रीज ने रिक्वेस्ट करी है कि भैया इसे रिस्ट्रिक्ट करिए कि रात में 12 बजे तक आपको जितना देखना है देखिए, और उसके बाद सुबह 6 बजे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे वॉच आवर कम नहीं हो जाएंगे? उस टाइम जो लोग देख रहे थे, और उस टाइम अगर हमारा बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने 11 बजे वीडियो डाली, तो भाई वो एक घंटे बाद आप बंद कर दोगे तो चलेगी कैसे? मेरे माइंड का ये एक थॉट था। तो क्योंकि अक्सर आधी अधूरी नॉलेज जो होती है ना वो बहुत हानिकारक होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ US में होने वाला है। तो इंडियन यूजर्स को कोई भी इफेक्ट ये चीज अभी तक तो नहीं करने वाली है, बट फ्यूचर में अगर US में हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए तो इंडिया में ले आए, बाकी कंट्रीज में ले आए, बट अभी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ US में लागू होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

कभी कभी ना फिल्म का नाम देखकर लगता है कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ही बोल दे कुछ तो गड़बड़ है दया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आज की पहली सिनेमा की अपडेट थोड़ी सी टॉक्सिक है। जी हाँ, बात हो रही है यश की टॉक्सिक की। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और विजुअल्स की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। कई लोगों को लगा कि फिल्म के विजुअल पर इतना फोकस कर दिया है कि कहानी रास्ते की छूट गई है। मतलब भाई नाम टॉक्सिक, एक्सपेक्टेशन ब्लॉकबस्टर वाली, और रिव्यूज में कहीं कहीं ऑडियंस बोल रही है ये कहानी थी या पेशेंस टेस्ट। अब यश के फैंस तो शायद कहेंगे भाई बस यश दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए, लेकिन बाकी ऑडियंस पूछ रही है स्टोरी भी दिखा दो। यानी टॉक्सिक ने रिलीज होते ही एक बात तो प्रूव कर दी है, नाम बिल्कुल सही रखा है, ओपिनियंस को लेकर पूरा माहौल ही टॉक्सिक बन गया है। आपको कैसी लगी टॉक्सिक?

जितनी भी वुमेन्स हैं, मैं उनकी तरफ से गेम खेल रहा हूँ, मैं आपकी वाली टीम पे हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं आपको धीरे धीरे ये भी टिप्स दूं कि आखिर आपसे एक मेन को या आपके जो भी बिलवड हैं उन्हें आपसे चाहिए क्या आखिर। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। व्हाट मेंस वांट, ये भी एक बड़ा सवाल आता है एज अ वुमेन जो आपके माइंड में बहुत बार आता होगा। तो देखिए, एक आदमी को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, उसको ये चाहिए कि थोड़ा टाइम आप उसको अपना पर्सनल दे दीजिए। अब कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं और गेट के अंदर एंटर करते हैं, तो आते ही अपने सवाल उनके ऊपर बैट बॉल की तरह डिक डिक डिक ना करिए, वरना वो हर बॉल को टुक करके वहीं रोक देंगे। ये थोड़ा क्रिकेट भाषा ज्यादा हो गई आपके लिए, नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ कि जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होते हैं, तुरंत उनसे काउंटर सवाल या तुरंत उनसे नगे ना पूछा करिए कि आज ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ हुआ। दो मिनट उनको बैठने दीजिए, उनको प्यार से लाके पानी दीजिए, वो पानी का गिलास पी लेने दीजिए, कपड़े चेंज कर लेने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाने दीजिए, आधे घंटे के प्रोसेस। और आधे घंटे बाद धीरे धीरे करके उनको एक एक चीज बताते जाइए लेयर बाय लेयर, तो वो उसे सुनेंगे भी, उसे समझेंगे भी। और आप तुरंत आते ही बोलते हो तो उनके मन में होता है अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे ये काम करना है, बॉस ने आज ऑफिस में ये बोला था, उसके बाद आप भी उनको भर देते हो। वही होता है ना, एक गिलास भरा हुआ तो इसमें आप और पानी डालो तो वो ओवरफ्लो होता है, तो यही ओवरफ्लो उनके साथ होता है। पहले जो दिन भर का गिलास भरा हुआ है उनका, उनको थोड़ा सा एम्प्टी करिए और उसके बाद अपना वाला पोर्शन उसमें भरिए, तो चीज बैलेंस हो जाएगी। तो समझ गए एक आदमी को क्या चाहिए। ऐसे ही डेली एक टिप, एक आदमी को क्या चाहिए, ये आपको यहीं पर मिलेगी। तो अब अगर आप अपने रिलेशनशिप को या अपने मेन को बेटर समझना चाहते हैं, तो ये शो जिसका नाम है नारी नंबर वन, ये कभी भी मिस मत करिएगा। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

उधर चला, जाए कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये मुझको क्या हुआ। देखिए भाई फिसले नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी फिसले नहीं है, लेकिन हाँ फोन पर बात करते करते ना कोई कहाँ तक जा सकता है ये बता दिया है इस बंदे ने, जो कि जौनपुर से निकल पड़ा बनारस तक पैदल। और पैदल क्यों निकला, देखिए भाई ये ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे और गर्लफ्रेंड से बात करते करते ना इन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि भाई कहाँ जा रही है इनके कदम। और जब इनके कदम रुके ना, फाइनली जब इनका पेट्रोल खत्म हुआ, इनकी एनर्जी खत्म हुई, यानी कि इनकी जब बैटरी खत्म हुई ना फोन की, तब इन्हें पता चला ये भाई साहब जौनपुर से सीधा आ गए हैं बनारस तक। तो देखिए भाई अगर इश्क करना है ना तो इतना कीजिए, इतना डूब जाइए उसमें नहीं उस इश्क में, आपको यही ना पता हो कि भैया दिन है या रात है, आसमां है या जमीन है, मोहब्बत है या नफरत है। वाह वाह वाह, आजकल बहुत शेरो शायरी की तरफ जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा मूड बड़ा ही शायराना है आज। और जब मैंने ये सोशल मीडिया वाला स्यापा देखा ना, तो वाकई यार दिल ना ऐसे हो गया। फिर मैंने सोचा कि अंजलि यार तू कितनी ज्यादा अकेली है ना अपनी जिंदगी में, कि तेरे को एक कॉल भी नहीं आता, और कभी एक फोन आ भी जाए ना गलती से तो वो किसका होता है, वो होता है पता है आपको किसका कॉल होता है, मुझे कंपनीज कॉल करती है यार, एजेंसीज कॉल करती है। कई एजेंसी तो मुझे ये बोलती है कि मैडम आप प्लीज ये वाला लोन ले लीजिए, इन्हें कैसे बताएं कि गरीबी इतनी ज्यादा है कि मैडम अपना फोन का रिचार्ज नहीं कर पा रही, यहाँ पे लोन कैसे लेंगे। खैर देखिए यार मैडम के दुख दर्द तो बहुत ज्यादा है और इन दुख दर्द की तरफ जाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर बात करें ना इनकी, ट्रू लव का कार्डियो कर दिया इन्होंने अपने इश्क मोहब्बत का, अगर किसी को इजहार करना हो ना तो इनकी तरह शिद्दत वाला प्यार जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो रिश्ता है ना ये क्या कहलाता है पता नहीं। अब पता नहीं इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी, वो मोहतरमा इन्हें रिवर्ट बैक करेंगी नहीं करेंगी, यानी कि इनके साथ शादी करेंगी ना करेंगी, लेकिन हाँ उन मोहतरमा ने ना इनका लव में कार्डियो तो करा दिया। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ये वाला गाना, बिकॉज गाना मैं बहुत ही अच्छा बजाती हूँ, और देखिए अगर हमेशा बात करती रहूंगी तो गाने कैसे सुनाऊंगी ना, तो एंजॉय कीजिए गाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

राइट्स भी होते हैं जिनके बारे में अक्सर उन्हें नहीं पता होता है। और ऐसे ही एक लीगल राइट के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट टू चूज। और ये राइट टू चूज जो है ये हर एक सिचुएशन में आता है। आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, और मीन्स कि वहाँ वाले अथॉरिटीज की ये है कि वो आपको हायर कर रहे हैं आप उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग।

राइट है, आप उसको मना कर सकते हैं। अब ये एक अलग आपकी बॉन्डिंग है कि आपकी टीम के साथ बॉन्ड अलग है, तो आप बोल देते नहीं आज मैं ओवर टाइम एक घंटा आपकी टीम बॉन्डिंग के लिए कर लेती हूँ, बट स्टिल वहां अगर वो आपको फोर्सफुली रोक रहे हैं या कुछ भी आपको ऐसे कह रहे हैं नहीं आपको रुकना ही पड़ेगा, नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा, तो यू हैव राइट टू लीव दैट प्लेस। और अगर उसके बाद वो कुछ करते हैं तो आप ये लीगली भी उनके अगेंस्ट कर सकते हैं कि मैंने अपना टाइम वहां पर पूरा करा है बट स्टिल दे आर नॉट अलाउइंग मी टू गो, तो ये मेरे ऊपर ओवरबर्डन्ड काम हो रहा है जो मैं नहीं करना चाह रही हूँ। तो ये एक राइट आती है, बस राइट्स के साथ हमारे पास ये पावर आने के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम राइट का गलत यूज ना करें। तो बींग अ वुमेन, बी लिटिल स्मार्ट, अपने राइट को समझिए, उसे सही जगह पे यूज करिए और उसका मिस यूज कभी ना करिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

इंस्टाग्राम पे एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। अब आप सोच रहे होगे ना, एक ऐसी बात कर रहे हो, लॉकडाउन तो शहर में लगता है, इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन कैसे लगने वाला है। देखिए, इंस्टाग्राम के जो ओनर है उन्होंने खुद आके ये चीज अनाउंस करी है, तो मैं इधर उधर की कोई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। और ये जो लॉकडाउन है ये लगने वाला है रात के 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। मतलब इंस्टाग्राम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। और ये इसलिए कि लोगों की स्लीप साइकिल जो है ना वो खराब हो रही है। 12 बजे के बाद इंस्टाग्राम चलाना शुरू करते, 2 बजे 2:30 बजे तक चलाते ही जा रहे, रिलीज स्क्रॉल कर रहे। तो इसलिए कंट्रीज ने रिक्वेस्ट करी है कि भैया इसे रिस्ट्रिक्ट करिए कि रात में 12 बजे तक आपको जितना देखना है देखिए, और उसके बाद सुबह 6 बजे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे वॉच आवर कम नहीं हो जाएंगे? उस टाइम जो लोग देख रहे थे, और उस टाइम अगर हमारा बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने 11 बजे वीडियो डाली, तो भाई वो एक घंटे वाला बंद कर दोगे तो चलेगी कैसे? मेरे माइंड का ये एक थॉट था। तो क्योंकि अक्सर आधी अधूरी नॉलेज जो होती है ना वो बहुत हानिकारक होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ US में होने वाला है। तो इंडियन यूजर्स को कोई भी इफेक्ट ये चीज अभी तक तो नहीं करने वाली है, बट फ्यूचर में अगर US में हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए तो इंडिया में ले आए, बाकी कंट्रीज में ले आए, बट अभी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ US में लागू होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज़ में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज़ में मन नहीं रखता। वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे? हमारे को हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले। डॉक्टर कॉलिंग।

She have changed the world, or I will say, she have changed the mentality. 89.6 रेडियो महारानी तुषार है आपके साथ, और ऐसे ही वर्ल्ड चेंजिंग कुछ फीमेल्स की स्टोरी मैं आपको रोज यहां पर सुनाऊंगा, आपको और मोटिवेट करने के लिए कि एक वुमेन क्या क्या कर सकती है। और इसमें जो पहली और स्टार्ट करने के लिए मेरे पास सबसे मोटिवेशनल स्टोरी है, वो किसी और की नहीं, हम सबके बीच की हमारी भारत की बेटी कल्पना चावला जी की है। जैसे हम सबको पता है, वो एक छोटे से गाँव में जन्मी थी और उसके बाद उन्होंने सपना जो है वो आसमान जितना बड़ा देखा था, और उस बड़े आसमान जितने सपने में वो उस आसमान को हकीकत में छूना भी चाहती थी। जब लड़कियों के सपनों को रोक दिया जाता था, तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं इन्हीं सपनों को उड़ान देके दिखाऊंगी। सबसे पहले उन्होंने इसी उड़ान के लिए मेहनत करते हुए एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो एक इंजीनियर तो बन चुकी थी, बट अब जर्नी शुरू होती थी कि इसको अपना करियर बनाना है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। फिर नासा में उन्होंने ज्वाइन किया, और नासा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अंदर और टेक्निकल चीजें सीखने के बाद एक दिन वो बनी भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने स्पेस में, और फिर एक दिन वो बनी भारत की वो सबसे पहली महिला जिन्होंने स्पेस में अपना पहला कदम रखा था। भारत की वो पहली महिला जिसने सबको ये साबित कर दिया था कि एक महिला कुछ अगर चाह ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं नारी हर आगाज में नंबर वन है, और इसीलिए कल्पना चावला की ये स्टोरी हमेशा हमें हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि हमें ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे ही हौसले रखने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और एक दिन सफलता खुद हमारे कदमों में होगी। कदमों में तो इनके स्पेस था, बट हमने जो इनकी कहानी यहाँ पर आपको बताई है, ये छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो शायद आपके जो सपने हैं उन्हें उड़ान देने में मदद करेगी। Only on 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

एक ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अकागुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकी, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल हैं। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

एक वुमेन के बैग में ना इतनी सारी चीजें होती हैं कि आप एक एक करके निकालेंगे ना तो आपको लगता है ये तिजोरी से कम नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। तो मैंने सोचा वुमेन के बैग की एक एक चीज को अगर हम डिकोड करेंगे तो उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री तो जरूर होगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग साउंड किया, तो मैंने कहा ये काम आपके लिए मैं कर देता हूँ। और आज जो पहली चीज हम डिकोड करने वाले हैं वो है लिपस्टिक। तो देखिए लिपस्टिक का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। सबसे पहले ये इजिप्ट में जो है वो इन्वेंट करी गई थी, जहां पर ये लिपस्टिक नेचुरल हुआ करती थी। वहां के जो नेचुरल फ्रूट्स होते थे उनका जो रंग हुआ करता था, वहां की रानी उस टाइम वो यूज करती थी अपने होठों पे लगाने के लिए। फिर धीरे धीरे वो चेंज हुआ कि ये तो फ्रूट का रंग है, एक घंटे में चला जाता है, आधे घंटे में चला जाता है, लॉन्ग लास्टिंग कुछ ढूंढो। तो वहां पर इसमें और मिनरल्स ऐड करे गए, फिर वहां पर लिपस्टिक को धीरे धीरे उसके शेप में ढाला गया। और समय के साथ ग्रीस, रोम और यूरोप ने भी ये लिपस्टिक का फैशन जो है ना वो अपना बना लिया। और 20th century के बाद ये लिपस्टिक जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा बन गई। और अब जो वुमेन है वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए इसे यूज करने लग गई है, उसका एक सिंबल बन चुका है। और साथ ही साथ लिपस्टिक सिर्फ मेकअप का पार्ट नहीं है भैया, लिपस्टिक दिखाती है उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल दिखाने का एक तरीका। और हर शेड की एक अलग कहानी होती है। जिस दिन लाइटर शेड है उस दिन मूड थोड़ा सा लाइटर, जिस दिन डार्कर शेड है उस दिन वो और अपने आप को पावरफुल दिखाना चाह रही है। तो हर एक शेड के पीछे एक खूबसूरत कहानी है और हर एक शेड उनको एक अलग रूप तो देता ही है बट उनकी मुस्कुराहट को और खूबसूरत बना देता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

उधर चला, मैं उधर चला, जाए कहाँ मैं किधर चल, अरे फिसल गया ये मुझको क्या हुआ। देखिए भाई, फिसले नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी फिसले नहीं है, लेकिन हाँ, फोन पर बात करते करते ना कोई कहाँ तक जा सकता है ये बता दिया है इस बंदे ने, जो कि जौनपुर से निकल पड़ा बनारस तक पैदल। और पैदल क्यों निकला? देखिए भाई, ये ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, और गर्लफ्रेंड से बात करते करते ना इन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि भाई कहाँ जा रही है इनके कदम। और जब इनके कदम रुके ना, फाइनली जब इनका पेट्रोल खत्म हुआ, इनकी एनर्जी खत्म हुई, यानी कि इनकी जब बैटरी खत्म हुई ना फोन की, तब इन्हें पता चला ये भाई साहब जौनपुर से सीधा आ गए हैं बनारस तक। तो देखिए भाई, अगर इश्क करना है ना तो इतना कीजिए, इतना डूब जाइए उस इश्क में, आपको ये ही ना पता हो कि भैया दिन है या रात है, आसमां है या जमीन है, मोहब्बत है या नफरत है। वाह वाह वाह, आजकल बहुत शेरो शायरी की तरफ जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा मूड बड़ा ही शायराना है आज। जब मैंने ये सोशल मीडिया वाला स्यापा देखा ना, तो वाकई यार दिल ना ऐसे हो गया। फिर मैंने सोचा कि अंजलि यार, तू कितनी ज्यादा अकेली है ना अपनी जिंदगी में, कि तेरे को एक कॉल भी नहीं आता, और कभी एक फोन आ भी जाए ना गलती से, तो वो किसका होता है? वो होता है, पता है आपको किसका कॉल होता है? मुझे कंपनीज कॉल करती है यार, एजेंसीज कॉल करती है। कई एजेंसी तो मुझे ये बोलती है कि मैडम आप प्लीज ये वाला लोन ले लीजिए। इन्हें कैसे बताएं कि गरीबी इतनी ज्यादा है कि मैडम अपना फोन का रिचार्ज नहीं कर पा रही, यहाँ पे लोन कैसे लेंगी। खैर देखिए यार, मैडम के दुख दर्द तो बहुत ज्यादा है, और इन दुख दर्द की तरफ जाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर बात करें ना इनकी, ट्रू लव का कार्डियो कर दिया इन्होंने अपने इश्क मोहब्बत का। अगर किसी को इजहार करना हो ना, तो इनकी तरह शिद्दत वाला प्यार जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो रिश्ता है ना, ये क्या कहलाता है पता नहीं। अब पता नहीं इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी, वो मोहतरमा इन्हें रिवर्ट बैक करेंगी नहीं करेंगी, यानी कि इनके साथ शादी करेंगी ना करेंगी, लेकिन हाँ उन मोहतरमा ने ना इनका लव में कार्डियो तो करा दिया। और इसी के साथ इंजॉय कीजिए ये वाला गाना, बिकॉज गाना मैं बहुत ही अच्छा बजाती हूँ, और देखिए अगर हमेशा बात करती रहूंगी तो गाने कैसे सुनाऊंगी ना, तो इंजॉय कीजिए गाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हेलो हेलो फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है? लंच हो गया आपका या चाय आ गई आपके पास? और अगर दोनों में से कोई भी काम नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, तब तक आप मेरी कंपनी एंजॉय कर लीजिए। और वैसे भी ना, कुछ लोगों के लिए ना दिन तब तक कंप्लीट ही नहीं होता जब तक वो मोबाइल में कुछ देख ना ले। कोई मूवी हो, सीरीज हो, कोई गाना हो, या फिर 10 मिनट की वो रील जो देखते देखते एक घंटा खा जाए।
2: नॉक नॉक, पीटर कौन है?
1: मैं आरजे पलक।
2: आरजे पलक? ये आरजे पलक कहाँ से आई? क्योंकि जिस दुनिया की तुम बातें कर रहे हो ना, वो आरजे मोनिका शो है, यानी कि फिल्मी टॉनिक वाला आरजे मोनिका।
1: बट अब से ये मेरा शो है।
2: मजे?
1: मतलब अब से मैं होस्ट करूंगी इसको।
2: तो मैं कहाँ गया? मतलब कि आपका आरजे मोनिक क्यों सुबह से सुनाई नहीं पड़ रहा?
1: क्योंकि अब आपकी सर विदाई हो चुकी है और आपकी जगह आ गए हैं आरजे तुषार, नारी नंबर वन शो लेकर, जो कि ऑलरेडी ऑडियंस सुन चुकी है, और आपकी जगह ले रही हूँ मैं, यानी कि आरजे पलक।
2: हाँ जी, बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ एक न्यू जर्नी की, और कुछ नए की होगी शुरुआत, तो आप सबसे यानी कि हमारे प्यारे लिसनर से विदा लेने की आ चुकी है अब बात।
1: तो सर, जाने से पहले आप बता दीजिए कि आप इस शो में क्या क्या बातें करते हैं?
2: शो में बहुत ही चर्चाएं फिल्में पिटारे की, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे सिल्वर स्क्रीन हिंदी सिनेमा हो, साउथ इंडस्ट्री की पट्टी, चाहे हो पंजाबी गानों का धमाल, और चाहे हो हॉलीवुड का सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर डबल डोज।
1: चलिए, मैं भी कुछ ऐसा ही लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए। लेकिन एक नई शुरुआत करने से पहले गाना हो जाए, ब्रेक के बाद मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

ही है, पर साइंस कुछ और कहे। हर मेडिसिन की टेस्टिंग होती है, एक वक्त तक उसकी क्वालिटी की गारंटी होती है, उसके बाद असर कम हो सकता है और रिस्क बढ़ सकता है।

0: गाना बजा दूं।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा, आपने इस वीकेंड कौन सी मूवी देखी? अब कुछ लोग कहेंगे कि हम टॉक्सिक देख के आए हैं और कुछ लोग कहेंगे कि हमने हनुमान अंश देखी, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं मूवीज को लेके इनका रिव्यू दे दिया जाए। और सबसे पहले मैं टॉक्सिक की बात करती हूँ कि यश के परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस डेफिनेटली फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग चीजों में से एक थी और उनके सीन्स में एक अलग इम्पैक्ट फील हुआ। और वहीं दूसरी तरफ कियारा आडवाणी भी अच्छी लगी इस मूवी में, लेकिन फिल्म की ना मेन प्रॉब्लम परफॉर्मेंस नहीं थी बल्कि स्टोरी का वीक होना था। फर्स्ट हाफ के बाद लगता है कि कहानी अपनी जगह पहुंच गई है, लेकिन सेकंड हाफ अननेसेसरली ना स्ट्रेस्ड फील हो रहा था। वॉयलेंस बहुत था, एक्शन बहुत था, पर उस वॉयलेंस को कैरी करने के लिए स्टोरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और यहीं दूसरी तरफ हनुमान अंश की अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म सिर्फ डिवोशन या मिरेकल्स के अराउंड नहीं घूमती बल्कि ग्रीफ, फेथ, काइंडनेस और सेवा को ज्यादा ह्यूमन वे में टच करती है। और मुझे इसका ये एक्सपेक्ट काफी जेन्युइन लगा कि स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं बल्कि छोटे छोटे एक्ट्स को काइंडनेस में भी दिखाया गया था। तो ओवरऑल टॉक्सिक में यश का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन स्टोरी डिसअपॉइंट करती है। और वहीं दूसरी तरफ हनुमान अंश एक ज्यादा इमोशनल और मीनिंगफुल वॉच फील होती है। अगर आपने इन दोनों में से कोई फिल्म देखी है तो मुझे अपना रिव्यू बता सकते हैं। नंबर है 9654896896 पर कॉल या व्हाट्सएप करके। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 9654896896। चलिए वक्त हो गया है गाने का। गाने के बाद बात करेंगे कि OTT पर आ रही है एक फ्रेश रिलीज। अब ये मूवी कौन सी है बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, अगर आपको वो मूवीज पसंद है ना जिनके ट्रेलर के बाद ही दिमाग बोलने लगता है कि भाई अब तो ये देखनी ही पड़ेगी, इस मूवी को बिना देखे मैं नहीं मानने वाला, तो इस वाली मूवी को नोट कर लेना। नेटफ्लिक्स पर आ रही है गांधारी, जिसमें तापसी पन्नू एक माँ बनी का रोल प्ले कर रही हैं। और स्टोरी यूं है कि बनी एक एक्सीडेंट के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देती हैं, लेकिन उसकी बेटी किडनैप हो जाती है और बस, और यहीं से शुरू होता है उनका मिशन। ब्लाइंड होने के बाद भी वो रुकती नहीं है, बल्कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सीधा डेंजर जोन में घुस जाती हैं। वो कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। बस इस मूवी में आपको वही देखने को मिलेगा। स्टोरी का बैकड्रॉप है जॉयपुरा, एक फिक्शनल टाउन जहां सीक्रेट स्फीयर और मिस्टीरियस बहरूपिया इस पूरी कहानी को एक और क्रीपी टच दे रहे हैं। और तापसी के साथ साथ इश्वक सिंह, जतिन सरना, स्वास्तिक मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और छाया कदम भी इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं। वैसे ट्रेलर देख के मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि इमोशन भी मिलेगा, साथ साथ इसमें सस्पेंस भी काफी है। इस मूवी की इतनी डिटेलिंग मैंने दे ही दी है, तो मैं आपको इसकी रिलीजिंग डेट बता देती हूँ। ये मूवी 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हो रही है। तो अगर आप थ्रिलर देखते वक्त हर 10 मिनट बाद बोलते हैं ना कि अब इसमें क्या होने वाला है, तो इसको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना। चलिए अब एक गाना हो जाए, गाने के बाद बताऊंगी कि अब कौन सा नया ट्रेलर या टीजर मैंने देखा। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

कभी कभी ना फिल्म का नाम देखकर लगता है कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ही बोल दे कुछ तो गड़बड़ है दया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आज की पहली सिनेमा की अपडेट थोड़ी सी टॉक्सिक है। जी हाँ, बात हो रही है यश की टॉक्सिक की। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और विजुअल्स की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। कई लोगों को लगा कि फिल्म के विजुअल पर इतना फोकस कर दिया है कि कहानी रास्ते में छूट गई है। मतलब भाई नाम टॉक्सिक, एक्सपेक्टेशन ब्लॉकबस्टर वाली, और रिव्यूज में कहीं कहीं ऑडियंस बोल रही है ये कहानी थी या पेशेंस टेस्ट। अब यश के फैंस तो शायद कहेंगे भाई बस यश दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए, लेकिन बाकी ऑडियंस पूछ रही है स्टोरी भी दिखा दो। यानी टॉक्सिक ने रिलीज होते ही एक बात तो प्रूव कर दी है, नाम बिल्कुल सही रखा है, ओपिनियंस को लेकर पूरा माहौल ही टॉक्सिक बन गया है। आपको कैसी लगी टॉक्सिक?

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: यार मुझे ना एक प्रॉब्लम है कि मैं ना हॉरर या थ्रिलर का ट्रेलर देख लेती हूँ ना, तो फिर रात को घर में कोई आवाज आ जाए तो मेरा दिमाग यही बोलता है कि बस भाई आज मैं गई, आज तो मेरा काम खत्म। लेकिन जो फिल्म मैं आज आपको बता रही हूँ ना, इसका कंसेप्ट सुन के ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मूवी का नाम है द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इमेजिन करो कि आप एकदम सिटी पर्सन हो और आप हर चीज में लॉजिक लगाते हो, और फिर ना आप अपने होम टाउन जाते हो जहां लोग आपको एक फोरबिडन जंगल में जाने से मना कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली आप हर चीज में लॉजिक लगा रहे हो तो आप यही बोलोगे रिप्लाई में, अरे यार इन सब चीजों में मैं विश्वास नहीं करता, ये सब चीजें कुछ भी नहीं हो। लेकिन फिर आप उसी जंगल में एंट्री करते हो और जो चीजें आपके सामने आती है ना, उनके सामने लॉजिक भी हाथ खड़े कर देते हैं। जी हाँ, इस मूवी में कुछ ऐसा ही है, जिसके लीड रोल में है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया, अनूप सोनी, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे इस मूवी में। साथ ही साथ कहानी सिर्फ जंगल तक नहीं है, यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट, एंशियंट फोक लोर, माइथोलॉजी, ग्रीड और सुपर नेचुरल फोर्सेस सब मिक्स होने वाले हैं। और ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी 25th of September को। तो अब देखना है कि जंगल में सच में कुछ है या गांव वाले इतने सालों से बिना बात के बस डर रहे हैं। चलिए अब एक गाना हो जाए और गाने के बाद बात करेंगे उन गानों की जो आजकल हर जगह सुनाई दे रहे हैं।

उधर चला, जाए कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये मुझको क्या हुआ। देखिए भाई फिसले नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी फिसले नहीं है, लेकिन हाँ फोन पर बात करते करते ना कोई कहाँ तक जा सकता है ये बता दिया है इस बंदे ने, जो कि जौनपुर से निकल पड़ा बनारस तक पैदल। और पैदल क्यों निकला, देखिए भाई ये ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे और गर्लफ्रेंड से बात करते करते ना इन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि भाई कहाँ जा रही है इनके कदम। और जब इनके कदम रुके ना, फाइनली जब इनका पेट्रोल खत्म हुआ, इनकी एनर्जी खत्म हुई, यानी कि इनकी जब बैटरी खत्म हुई ना फोन की, तब इन्हें पता चला ये भाई साहब जौनपुर से सीधा आ गए हैं बनारस तक। तो देखिए भाई अगर इश्क करना है ना तो इतना कीजिए, इतना डूब जाइए उसमें नहीं उस इश्क में, आपको ये ही ना पता हो कि भैया दिन है या रात है, आसमां है या जमीन है, मोहब्बत है या नफरत है। वाह वाह वाह, आजकल बहुत शेरो शायरी की तरफ जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा मूड बड़ा ही शायराना है आज। और जब मैंने ये सोशल मीडिया वाला स्यापा देखा ना, तो वाकई यार दिल ना ऐसे हो गया। फिर मैंने सोचा कि अंजलि यार तू कितनी ज्यादा अकेली है ना अपनी जिंदगी में, कि तेरे को एक कॉल भी नहीं आता, और कभी एक फोन आ भी जाए ना गलती से तो वो किसका होता है। वो होता है पता है आपको किसका कॉल होता है, मुझे कंपनीज कॉल करती है यार, एजेंसीज कॉल करती है। कई एजेंसी तो मुझे ये बोलती है कि मैडम आप प्लीज ये वाला लोन ले लीजिए, इन्हें कैसे बताएं कि गरीबी इतनी ज्यादा है कि मैडम अपना फोन का रिचार्ज नहीं कर पा रही, यहाँ पे लोन कैसे लेंगे। खैर देखिए यार मैडम के दुख दर्द तो बहुत ज्यादा है और इन दुख दर्द की तरफ जाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर बात करें ना इनकी, ट्रू लव का कार्डियो कर दिया इन्होंने अपने इश्क मोहब्बत का। अगर किसी को इजहार करना हो ना तो इनकी तरह शिद्दत वाला प्यार जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो रिश्ता है ना ये क्या कहलाता है पता नहीं। अब पता नहीं इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी, वो मोहतरमा इन्हें रिवर्ट बैक करेंगी नहीं करेंगी, यानी कि इनके साथ शादी करेंगी ना करेंगी, लेकिन हाँ उन मोहतरमा ने ना इनका लव में कार्डियो तो करा दिया। और इसी के साथ इंजॉय कीजिए ये वाला गाना, बिकॉज गाना मैं बहुत ही अच्छा बजाती हूँ, और देखिए अगर हमेशा बात करती रहूंगी तो गाने कैसे सुनाऊंगी ना, तो इंजॉय कीजिए गाना।

0: कुछ कुछ कुछ हटके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: विद बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट, म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर
1: यार, कुछ गाने ना सुनने के लिए नहीं होते बल्कि फील के लिए होते हैं, और अजय ना चाह सुन के मुझे एग्जैक्टली वही फीलिंग आती है। सिमरन चौधरी का ये पंजाबी सॉन्ग बेसिकली ओल्ड स्कूल लव वाली फीलिंग है, वो वाला प्यार जहां सामने वाला जाने लगे तो बस दिल करता है बोल दो कि अभी मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। और अजय ना जा का मतलब भी यही है, और पूरे गाने में ना वही लॉन्गिंग है कि आंखों का मन अभी भरा नहीं, साथ बिताया हुआ वक्त अभी और चाहिए। सबसे प्रिटी चीज मुझे ये लगती है कि गाने बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं करता, बस उस इंसान के पास थोड़ा वक्त बिताने की विश करता है। और शायद इसीलिए कुछ गाने इतने रिलेटेबल लगते हैं कि हम अपने पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे पास बैठा हो, जाने की बात करे और हमारा दिल कहे कि अभी मत जाओ, थोड़ा और रुक जाओ। चलिए अब इस गाने के बारे में मैंने आपको बताया है तो सुना देती हूँ आपको यही गाना, और गाने के बाद बॉलीवुड से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट आपको बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

रेडियो महारानी

अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि विजय सालगांवकर की लाइफ में अगर आपको लग रहा था कि सब कुछ अब सेटल हो चुका है, फिल्म एंड हो चुकी है, तो भाई एक सेकंड, आपने दृश्यम देखी ही कहां है, क्योंकि विजय सालगांवकर वापस आ रहे हैं और इस बार कहानी का नाम है दृश्यम दी कंक्लूजन। और इसमें अजय देवगन फिर से विजय के रोल में नजर आएंगे और साथ में तबू, श्रिया सरन और रजत कपूर भी अपने फेमिलियर कैरेक्टर्स के साथ रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन इस बार गेम में कुछ नए प्लेयर्स भी हैं, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज। और अगर आपने पहले ही दोनों पार्ट देखे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि विजय अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। अब सवाल ये है कि इस बार उसके सामने कौन है और क्या वो फिर से सबको अपनी प्लानिंग से हरा पाएगा। फिल्म को अभिषेक पाठक डायरेक्ट कर रहे हैं और ये मूवी आपको थिएटर्स में 2 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। मतलब विजय सालगांवकर का फाइनल गेम शुरू होने वाला है और मुझे बस एक ही चीज जाननी है कि इस बार विजय के पास प्लान क्या है। और मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए अब एक गाना हो जाए और गाने के बाद मिलते हैं पंजाबी सिनेमा की एक इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: पेशेंटिया कर सुन पे मेरी।
3: किया बेबे।
2: बेबे
3: लड्डू भाई तू भी मैं चलिया अपने कबूतर गाने पा।
4: तू कबूतर ही देखता रही, तू कबूतर ही ना देखी।
5: बेबे
2: मेरे नाल ही टीचर करी।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी, पंजाबी सिनेमा के लवर जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपको कॉमेडी, रोमांस और फैमिली के साथ बैठ के मूवी देखने वाली वाइब पसंद है ना, तो ये वाली फिल्म आपके लिस्ट में आ सकती है। गिप्पी गिरवाल और शहनाज गिल एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं सिंह वर्सेस कौर पार्ट 2 में। अब नाम से ही समझ आ रहा है ना कि प्यार तो हो गई होगा, लेकिन इतनी आसानी से कहा, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। फिल्म में लव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली ड्रामा और काफी सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी। मतलब वो टिपिकल पंजाबी एंटरटेनर वाला फ्लेवर, थोड़ा रोमांस, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ा फैमिली का प्रेशर और बीच बीच में फुल ऑन मस्ती। और इस फिल्म को नवनीत सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं और गिप्पी गिरवाल और शहनाज गिल की पेयरिंग को लेकर फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। और ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 11th of September को। तो अगर आपको ऐसी मूवी चाहिए जिसे फैमिली के साथ बैठकर देख सको, थोड़ा हंसी मजाक हो, थोड़ा रोमांस देखने को मिले, और थिएटर से जब आप बाहर निकलो ना तो एकदम हल्के मूड के साथ निकलो, तो आप ये मूवी जरूर देखने जा सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है गाने का, और गाने के बाद पूरे शो की फिल्मी जर्नी को एक बार रिवाइंड करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

कैप्सूल। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है, तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी, बस अब टाइम हो गया है आज के फिल्मी फ्लेवर को शटर डाउन करने का। और देखो, दो घंटे में कितना कुछ कवर कर लिया। टॉक्सिक और हनुमान अंश से लेकर गांधारी, दवन और दृश्यम दी कंक्लूजन तक मूवीज की बात हुई। अजय ना जा के साथ थोड़ा सोलफुल भी हुए और सिंह वर्सेस स्कॉट पार्ट 2 के साथ पंजाबी फ्लेवर भी आ गया। मतलब एंटरटेनमेंट की आज की फुल डोज मैंने आपको दे दी। मैं हूँ अजय पलक और अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, क्योंकि आज जाऊंगी तभी तो कल फिर आऊंगी। कल फिर मिलूंगी नए फिल्मी फ्लेवर्स के साथ। तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।

उधर चला, मैं उधर चला, जाए कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया ये मुझको क्या हुआ। देखिए भाई, फिसले नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी फिसले नहीं है, लेकिन हाँ, फोन पर बात करते करते ना कोई कहाँ तक जा सकता है ये बता दिया है इस बंदे ने, जो कि जौनपुर से निकल पड़ा बनारस तक पैदल। और पैदल क्यों निकला, देखिए भाई, ये ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, और गर्लफ्रेंड से बात करते करते ना इन्हें यही ध्यान नहीं रहा कि भाई कहाँ जा रही है इनके कदम। और जब इनके कदम रुके ना, फाइनली जब इनका पेट्रोल खत्म हुआ, इनकी एनर्जी खत्म हुई, यानी कि इनकी जब बैटरी खत्म हुई ना फोन की, तब इन्हें पता चला ये भाई साहब जौनपुर से सीधा आ गए हैं बनारस तक। तो देखिए भाई, अगर इश्क करना है ना तो इतना कीजिए, इतना डूब जाइए उसमें नहीं, उस इश्क में। आपको ये ही ना पता हो कि भैया दिन है या रात है, आसमां है या जमीन है, मोहब्बत है या नफरत है। वाह वाह वाह, आजकल बहुत शेरो शायरी की तरफ जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा मूड बड़ा ही शायराना है आज। और जब मैंने ये सोशल मीडिया वाला स्यापा देखा ना, तो वाकई यार दिल ना ऐसे हो गया। फिर मैंने सोचा कि अंजलि यार, तू कितनी ज्यादा अकेली है ना अपनी जिंदगी में, कि तेरे को एक कॉल भी नहीं आता, और कभी एक फोन आ भी जाए ना गलती से, तो वो किसका होता है? वो होता है, पता है आपको किसका कॉल होता है? मुझे कंपनीज कॉल करती है यार, एजेंसीज कॉल करती है। कई एजेंसी तो मुझे ये बोलती है कि मैडम आप प्लीज ये वाला लोन ले लीजिए। इन्हें कैसे बताएं कि गरीबी इतनी ज्यादा है कि मैडम अपना फोन का रिचार्ज नहीं कर पा रही, यहाँ पे लोन कैसे लेंगे। खैर देखिए यार, मैडम के दुख दर्द तो बहुत ज्यादा है, और इन दुख दर्द की तरफ जाएंगे भी नहीं, लेकिन अगर बात करें ना इनकी, ट्रू लव का कार्डियो कर दिया इन्होंने अपने इश्क मोहब्बत का। अगर किसी को इजहार करना हो ना, तो इनकी तरह शिद्दत वाला प्यार जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो रिश्ता है ना, ये क्या कहलाता है पता नहीं। अब पता नहीं इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी, वो मोहतरमा इन्हें रिवर्ट बैक करेंगी नहीं करेंगी, यानी कि इनके साथ शादी करेंगी ना करेंगी, लेकिन हाँ उन मोहतरमा ने ना इनका लव में कार्डियो तो करा दिया। और इसी के साथ इंजॉय कीजिए ये वाला गाना, बिकॉज गाना मैं बहुत ही अच्छा बजाती हूँ, और देखिए अगर हमेशा बात करती रहूंगी तो गाने कैसे सुनाऊंगी ना, तो इंजॉय कीजिए गाना। Best of Anjali.

0: 89.6 FM कुछ छक्के
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है।

0: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
2: है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
1: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर्दियां ही आ गई है अब, क्योंकि रात भी जल्दी हो जा रही है, सुबह भी लेट हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर्दी का एहसास दिला रही है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी आरजे गौरव आप सभी के साथ आ गया है फिर से। सुबह सुबह जब जल्दी उठोगे ना, तो आप लोगों को वो खुशबू सी सुंघाई देगी, मतलब खुशबू सी आएगी, बहुत प्यारी प्यारी सौंधी सौंधी सी खुशबू जो सर्दियों में आती है अक्सर, और एहसास हो जाएगा कि हाँ मौसम सच में बदल रहा है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो बता रही है मौसम बदल रहा है, और वो है लोगों का गला ख़राब हो रहा है, उसके साथ साथ लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। मैं अभी रिकवर हूँ, ऑल्दो मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो ये बॉडी पेन था ना, दैट वॉज अनबेरेबल। सच में पहली बार हुआ है मुझे ज़िंदगी में ऐसा वाला बॉडी पेन। खैर, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। अगले चार घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ, 5 बजे से लेके 9 बजे तक, सोमवार से लेके शुक्रवार तक आप सभी के साथ रहता हूँ। एंड जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दूँ कि देखो, फरीदाबाद में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है ना किसी भी चीज़ से, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग भी मुझसे बातें कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। फरीदाबाद में अगर कोई प्रॉब्लम देख रहे हो आप लोग, जैसे जगह जगह पर कचरा फैला हुआ है, वो तो हड़ताल की वजह से है ना, मतलब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे तो फिर कौन साफ करेगा, हमारी जिम्मेदारी है अभी फिलहाल। तो करेंगे सब चीज़ों के बारे में बात, फरीदाबाद से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके देश भर तक, देश भर से लेके दुनिया भर तक सारी बातें होंगी, और उसके साथ चलेंगे खूब सारे गाने। तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए गाने चला रहा हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर। सुनिए इस गाने को, वापस आकर बात करते हैं इस मानसून की।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हंसी है, शाम भी हंसी है, बस ये मॉनसून कैसा चल रहा है बस इसी का समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये ही इस बार हसीन नहीं है। तलविंदर की आवाज में गाना, और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी आरजे गौरव इन द हाउस। और कभी कभार ना ऐसे में चिल्ला देता हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे ऐसा लगता है देखो कभी आप लोग मुझसे मिलोगे ना तो आप मेरे को बिल्कुल डिफरेंट इंसान पाओगे। मतलब आप बोलोगे यार तू तो रेडियो में डिफरेंट बोलता है, सामने से तू बिल्कुल अलग है। खैर मॉनसून की मैं बात कर रहा हूँ, और मॉनसून की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि डोंट यू थिंक कि मॉनसून में बारिश होती है? मतलब हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है मॉनसून में। इधर कहाँ हो रही है, पिछले मंडे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि पहले तो लग रहा था कि रक्षाबंधन वाले दिन भी बारिश हो जाएगी, फिर उसके बाद सैटरडे को भी बारिश हो जाएगी, फिर उसके बाद लगा संडे को भी बारिश हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खैर ये मॉनसून के साथ साथ हम लोग बात करना चाहता हूँ मैं नेपाल फ्लड्स के बारे में। जो भी था वो विजुअल जो था दैट वॉज टू डिवास्टेटिंग। मतलब हमारा सबका दिल टूट गया, दिल पसीद सा गया वो विजुअल्स देखने के बाद। लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के साथ कितने सारे लोग लापता हैं, 2500 से ज़्यादा लोग लापता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स है, शायद रियल फिगर्स इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है देखो इस मुसीबत की घड़ी में हमें अपने पड़ोसी देश यानी कि नेपाल के साथ खड़ा रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप लोग कैसे सपोर्ट दे सकते हो? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अभी इस टाइम फ्लड रिलीफ के लिए वहाँ पर जा रही हैं। इंडिया ने भी अपना सपोर्ट दिया है, इंडियन आर्मी वहाँ गई है, इंडिया का NDRF गया है। और इसी के साथ साथ आप सभी को एक और बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग खुद से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ पर बैठे हुए लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप वहाँ की लोकेशन डालिए, वहाँ कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो वीडियोस डाल रहा है, जो वीडियोस पोस्ट कर रहा है। तो एक सॉलिडैरिटी के लिए आप लोग उधर कमेंट कर सकते हो, उधर जाके वीडियोस पे, उनकी वीडियोस पे, और बता सकते हो कि हाँ हम लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं। तो ये जो नेपाल फ्लड्स थे, भगवान ना करे कभी भी ऐसा किसी और के साथ हो, बट वो वीडियोज़ देखने के बाद सच में दिल टूट गया था। चलिए मैं तो बस यही बोलूँगा भगवान से कि सब कुछ ठीक रहे और खैरियत में रहे सब लोग। और गाना चलाता हूँ आप लोगों के लिए, रेडियो महारानी 89.6 पर गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ।

0: एस आई आर का फॉर्म सबने भर दिया था ना, सब लोगों ने ढंग से। फिर उसके बाद उसकी लिस्ट आ गई थी कि ये रहे नाम, ये रहा आपका एड्रेस। अगर उसमें भी कोई गलती थी तो 30 अगस्त तक की डेट दी गई थी कि आप लोग फिर से उस चीज़ को ठीक करवा सकते हो। मगर अब उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 सितंबर कर दिया गया 30 अगस्त की जगह, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 99.6 पर। भारत का निर्वाचन आयोग और हरियाणा में जितने भी ये वोटर्स लिस्ट थी, तो उसमें जो पुनर्निरीक्षण कहते हैं हिंदी में अगर मैं बोलूँ, बेसिकली आप लोगों ने जो भी डिटेल्स दी थी अपनी, और वो डिटेल्स वापस आई है कि हाँ आपका नाम, आपका पता, जो भी चीज़ करेक्शंस थी सब कुछ हो गई थी। फिर उसके बाद काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग नाम तो सही देते हैं बट वहाँ पर गलत अगर स्पेलिंग चढ़ गई है, या फिर एड्रेस गलत डल गया है, या फिर आपका कॉन्टैक्ट गलत डल गया, कुछ भी एनीथिंग ABC XYZ, तो आप लोग उसको करेक्ट करवा सकते थे। पहले डेट थी 30 अगस्त, मगर अब उसको 30 अगस्त की बजाय 30 सितंबर कर दिया गया। 30 सितंबर तक आप लोग अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, और इसका जो निपटारा था ना वो 28 सितंबर तक हो जाना था, बट अब इसको चेंज करके 28 अक्टूबर तक होगा वो। तो डेट्स बढ़ा दी गई है, और अगर आपकी जो ये वोटर लिस्ट है उसका जो प्रकाशन है फिर से होगा वो 3 अक्टूबर की जगह अब 6 नवंबर को किया जाएगा। तो अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि आपकी नाम कहीं गलत है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ जाके उसे करेक्ट करवा लीजिए। और जितने भी लोग 18 से ऊपर के हो गए हैं, भले ही कल हुए हैं, परसों हुए हैं, आज हुए हैं, या फिर होने वाले हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपना वोटर आईडी कार्ड ज़रूर बनवाएं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एक हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर बहुत सिंपल सा है, 1950। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका नाम में कुछ भी गलती है, तो आप अपने BLO से कॉन्टैक्ट कीजिए। अब BLO का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को जो फॉर्म दिया था ना, तो दो फॉर्म्स थे, एक तो भर के आपको रिसीविंग लेनी थी, तो जो रिसीविंग ली है ना आपने उसमें BLO का नंबर भी है, तो उनको कॉल करके आप लोग कर सकते हैं, उन्हें कॉल करके कॉन्टैक्ट कीजिए। और इसी के साथ साथ आप लोग अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ऐसी खूब सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता रहूँगा, और अभी इस गाने को एंजॉय कीजिए। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ गौरव आपके साथ।
1: I'm a pussy boy. Sorry.

घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ऐसा लगता है कि कहाँ पर आ गए हैं हम, क्योंकि जगह जगह पर कचरा फैला हुआ है और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे फरीदाबाद में है। स्वागत है आप सभी का, रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। एंड बहुत देर से बातें कर रहे थे तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि आज की डेट में फरीदाबाद में हर जगह कूड़ा आपको दिखाई देगा। एक्चुअली मैं हम सबको पता है कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, ऑल्दो उनके अलावा भी और भी लोगों को लगाया गया था सफाई के लिए और वो भी सफाई करने की कोशिश कर रहे थे, बट कोई कोई ऐसी जगह है हर सेक्टर में, हर कॉलोनी में या फिर हर एरिया में जहाँ पर लोग ना खुद आके कूड़ा डाल जाते हैं। वो पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता, वो लोग जो कूड़े वाली गाड़ी आती है वो तो आ ही रही है मेरे घर के आगे, तो रोज़ आ रही है, आपके एरिया में भी आ रही होगी, आई डोंट नो उनको क्यों नहीं देते हैं। वो सारा का सारा कचरा उठाकर जाकर फेंक देंगे किसी भी जगह पे, जैसे मान लेते हैं गली के कोने पे फेंक देते हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग पार्क के बाहर फेंक देते हैं, कुछ लोग गाड़ी चलाते चलाते प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के ग्लास, ये सब चीज़ें, चिप्स के पैकेट, ये सब चीज़ें बाहर फेंक देते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करें जनाब, ना करें, ऐसे करने से हमारा फरीदाबाद ही गंदा होगा। और आजकल तो मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ एंड वो चीज़ देखने के बाद ना दिल टूट जाता है। कचरा बहुत सारा पड़ा है, फिर उसके बाद वहाँ पर लोग गीला कचरा भी फेंक जाते हैं और फिर वहाँ पर आती हैं गायें, वहाँ पर आते हैं आवारा पशु, और मैंने देखा था गायें प्लास्टिक खा रही थी, तो वो चीज़ देख के ना बड़ा दिल टूट गया। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, क्यों? क्योंकि पूरे एरिया में पानी भरा पड़ा था और वहाँ पर न जाने क्या क्या तैर रहा था, और ये सब देखने के बाद ना दिल सच में टूट गया। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ कूड़ा मत फैलाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कूड़ा उठाइए, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि कचरा मत फैलाइए, खुद से मत फैलाइए। मैं अभी हाथ जोड़ के बैठा हूँ सच में, आई डोंट नो वाई, बट स्टिल। खैर, अभी रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे और उन्हीं में से ये गाना तो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, मंडे की शाम मंडे ब्लूज़ को भुला देगा।

0: उपवास हैं।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि अगर आप लोगों को जिंदगी में कुछ भी करना है ना तो अनस्टॉपेबल तो बनना ही पड़ेगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? और आई होप ठीक होंगे। बट एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, अनस्टॉपेबल तो शायद ये लड़की है क्योंकि ये भी बनना चाहती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और शायद ये है भी क्योंकि इसका नाम है रिया और ये कह रही है कि मुझे एक अच्छे से पति की तलाश है। ऐड डाली है, हाँ वो जो मैट्रिमोनियल एड्स नहीं होती न्यूज़पेपर में, उसमें ऐड आई। और मैं जब ये पढ़ रहा था आई वाज लाइक शॉक्ड। इसने बोला है मुझे मोई मोई टाइप का पति चाहिए जिसको पता हो, मतलब पति को पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है और उसको कैमरा चलाना आना चाहिए और बेसिकली एक रील पार्टनर भी होना चाहिए। उसने लिखा है माई नेम इज़ रिया, आई एम लुकिंग फॉर अ सूटेबल रील पार्टनर प्लस ग्रूम। और लड़के को कैमरे के आगे कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को ये बता होना चाहिए और उसके साथ साथ पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है वो रील में भी दिखाने के लिए रेडी हो, तो ही मैं उससे शादी करूंगी। और लड़के की जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्त को भेज दूँ क्योंकि उसको हरकतें करने में तो बड़ा मज़ा आता है मगर वो कैमरे के आगे नहीं करता। बट कोई नहीं, कर लेगा इस लड़की के लिए। और हाँ, लड़की ये भी कह रही है अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं ना, इससे पहले आप एक काम करना, अमेज़ॉन मिनी टीवी है उसमें हाफ लव हाफ अरेंज्ड ये मूवी देख लेना, मूवी नहीं सीरीज देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा मुझे कैसे लड़के नहीं पसंद है। और कह रही है एडिटिंग भी आनी चाहिए, रील भी बनानी आनी चाहिए, व्लॉग भी बनाने आने चाहिए। यार ये तो शायद जॉब की डिस्क्रिप्शन दे दी मुझे लगता है इस लड़की ने। खैर नया ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। और मैं तो ये बार बार बोलता हूँ कि आप लोग भी ट्राई कीजिए एक चीज़, क्या रील बनाना, क्योंकि रील्स में शायद अगर आपकी किस्मत चमक गई तो फिर पैसा ही पैसा होगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलेंगे, उन्हीं में से ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.0।

क्या आप लोगों ने सपने में कभी भूत देखा है? क्योंकि जब भूत को देखते हैं ना हम लोग सपने में, काफी बार ऐसा होता है कि नींद भी खुल जाती है। और वैसे भी वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का, यानी कि नाइटमेयर्स का। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत है आरजे गौरव आप सभी का करता है, मतलब मैं उल्टा बोल गया शायद, आज गौरव आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर HR 896 सुन रहे हैं आप। एंड एक बात बोलना चाहूँगा, देखो सपने में भूत देखते हैं हम लोग काफ़ी बार होता है। अगर आपको नॉर्मल भूत दिख रहा है तो इसका मतलब है रियल लाइफ में आपकी चिंता चल रही है, डर है आपके मन में, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपका। और अगर भूत हमला कर रहा है अगर आप पे, तो समझ लो ये आने वाली किसी बीमारी, एक्सीडेंट या फिर बड़ी मुसीबत के लिए अलर्ट जारी हो रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप भूत से बातें कर रहे हैं तो भूत से बात करना हमेशा अशुभ माना जाता है, ये किसी बने बनाए काम को बिगड़ने या फिर धोखे का इशारा भी हो सकता है। और भूत से डर कर अगर आप लोग भाग रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप रियल लाइफ में भी अपनी किसी जिम्मेदारी या प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और भूत को मारना या भूत को हराना, अगर आप भूत को हरा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जल्दी अपनी सारी परेशानियों पर जीत हासिल कर लेंगे। और देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है ना तो उसको दूर फेंकिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन। और हमेशा अपने आप से बोलिए आई एम डन विद इट, नहीं मैंने कंप्लीट कर लिया, देन आई एम डन। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर भी आप सभी के लिए यही गाना आई एम डन, मान भानु की आवाज में, दिल में अब कोई ख्याल ही नहीं है। सुनिए इस गाने को, मेरी आवाज में अच्छा नहीं लगेगा, आप सुनिए ओरिजिनल आवाज में। दिल

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

अब मैं कुछ डेट्स बोलने वाला हूँ और वो डेट्स मेरी शादी की नहीं है, मतलब वो डेट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी टीम इंडिया के लिए। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? डेट्स सुन लीजिए आप, देखिए 13, 15, 17, 27, 28, 30 हाँ सितंबर की। और पता लगा आप लोगों को सितंबर भी आ गया, इतनी तेजी से कैसे वक्त बीत रहा है। मार्च तो अभी गया था, अभी तो हमने होली खेली थी, गर्मियां तो अभी झेली थी, उसके बाद अभी सितंबर भी आ गया। खैर सितंबर आ गया तो बता दूं आप लोगों को, सितंबर में 13, 15, 17 मैच है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद 27 तारीख को है ODI अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और ये ना कुछ अमेजिंग होने वाले ODI में, तो आप सभी को पता है हमारे दो खिलाड़ी रोको यानी कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, तो ये दोनों हम लोगों को खेलते हुए दिख जाएंगे और मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई इन दोनों को खेलते हुए देखने के लिए, क्योंकि मज़ा सही तो आ जाएगा। वो एक लाइन है ना, मज़ा ही तो आ जाएगा। और उसके बाद फिर बता दूँ आपको 27 तारीख को तो चलो मैच है ODI किसके साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, बट 28 को क्यों मैच है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले हफ्ते, मैं इस हफ्ते फिर से डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि एशियन गेम्स में इंडियन टीम क्वार्टर फाइनल में मैच खेलेगी किसके साथ, ये तो वक्त बताएगा, और डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में खेलेगी, डोंट वरी। और मुझे ऐसा लगता है एशियन गेम्स में एक और गोल्ड तो आ ही जाएगा इस बार, क्योंकि एशियन गेम्स में कंट्रीज कौन कौन सी होती है, पाकिस्तान को तो यूं ही हरा देंगे, श्रीलंका को भी जस्ट हराया है, और फिर उसके बाद बांग्लादेश बची वो तो शायद खेलेंगे नहीं हमारे साथ, आप सभी को याद होगा, और कितनी कंट्रीज रहेगी, और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को तो उससे पहले ही हरा देंगे, तो ये वक्त बताएगा कि इस बार हमें एशियन गेम्स में क्रिकेट के थ्रू एक और गोल्ड मिलेगा या फिर नहीं। बट उसके बाद बता दो आपको 30 तारीख को फिर से ODI है और ऐसे ही क्रिकेट का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखिए ये तो बात होगी क्रिकेट की, बट अभी रिसेंटली मोदी जी ने संबोधन किया कुछ खिलाड़ियों का और उसमें कुछ बात बोली और वो बात मुझे कहीं ना कहीं हिट भी हुई। वो था कि इंडिया काफ़ी बार ऐसे स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता जो कि विदेशी खेल रहे हैं और विदेशी लोग उसमें गोल्ड लेकर आ रहे हैं, इंडिया से एक भी पार्टिसिपेशन तक नहीं होता उसमें। तो मुझे लगता है कि हाँ हम लोगों को वो वाले स्पोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आपको पता है फेंसिंग नाम का जो स्पोर्ट है उसमें भी टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुकी है, तो मुझे लगता है वक्त आने वाला है जिसमें टीम इंडिया और भी बहुत सारे गोल्ड लेकर आने वाली है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे प्यारे गाने होने, वैसे ये वाला प्यारा गाना रेडियो महारानी।

0: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आपको पता है इस साल बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मूवीज आने वाली है, और सितंबर में तो कुछ ज्यादा ही अच्छी अच्छी मूवीज आने वाली है। रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, और वक्त हो चुका है इस टाइम अक्सर मैं बात करता हूँ बॉलीवुड की। बॉलीवुड को कुछ लोग कुछ और वुड भी बुलाते हैं, खैर इस पे नहीं जाते। अभी देखो बॉलीवुड में मूवीज रिलीज होने वाली, बॉलीवुड टॉलीवुड सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। देखो सबसे पहले आई एम गेम दुलकर सलमान की 3 सितंबर को रिलीज हो रही है, और दुलकर सलमान वही है जिसने लक्की भास्कर में किरदार निभाया था, बहुत ही अच्छी मूवी थी लक्की भास्कर। आई एम गेम ये मूवी आ रही है, फिर उसके बाद मिर्जापुर द मूवी, और इसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। पंकज त्रिपाठी अली फजल, और 4 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने जा रही है। उसके बाद हैवान 11 सितंबर को, और फिर उसके बाद द वन है या फिर वन है, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया, 25 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने जा रही है। फिर उसके बाद जिसका सभी को था इंतजार, दृश्यम 3 के लिए मैं तो वेट कर रहा हूँ। और बता दूँ आपको, दृश्यम 3 ऑलरेडी बन चुकी है साउथ इंडियन सिनेमा में, और वो रिलीज़ हो गई थी मई 2026 में, बट वो हिंदी में नहीं है, सब टाइटल्स वाली मेरे को देखनी है नहीं, तो मेरे को हिंदी वाली देखनी है, अजय देवगन और तब्बू वाली, वो मैं देखूँगा अक्टूबर 2, 2026 को। फिर उसके बाद आएगी जेलर 2, रजनीकांत रिटर्न कर रहे हैं, और बता दूँ आपको एक्शन पैक्ड है, जेलर मूवी का पार्ट 2 है ये। और फिर उसके बाद द मोस्ट अवेटेड रामायण, जो कि एक्सपेक्टेड है दिवाली 2026 में, यानी कि नवंबर में। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन सारी मूवीज़ के लिए। अब इसमें इनके अलावा प्रभास की मूवी आने वाली है फौजी, अब वो आएगी 3 दिसंबर 2026 को। फिर उसके बाद किंग भी एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2026 में, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण एंड अभिषेक बच्चन तीनों दिखाई देंगे। वक्त बताएगा कौन सी मूवी कैसी चलेगी, मगर मैं कुछ मूवीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलिए उन मूवीज़ का इंतज़ार रहेगा, मगर गाने का इंतज़ार आप लोगों को नहीं करने दूंगा, क्योंकि गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी पर ये वाला।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सिनेमा कैप्सूल।
1: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

क्या आप लोगों का भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है? क्योंकि बहुत सारे लोग बिजली के बिल से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इनफैक्ट मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान होंगे ही होंगे। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी के साथ है। गौरव मेरा नाम है एंड शाम हो रखी है, बहुत देर से बातें कर रहे थे और इसी के बीच में मेरे को ना अचानक से याद आया एसी के बारे में। क्योंकि देखो, एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो आई थी मेरे सामने, वो कह रही है कि एक सेटिंग बदली है मैंने एसी की और उसकी वजह से उसके 2200 रुपये महीने के बच रहे हैं। फिर मैंने पूरी वीडियो देखी, मैंने सोचा यार फरीदाबाद की पब्लिक के बारे में तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कौन नहीं चाहता पैसे बचाना। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर है, इनका दावा है कि देखो इन्होंने ना एसी का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री से शिफ्ट करके 28 डिग्री कर दिया था। है 28 डिग्री पे क्या ठंडा करेगा रूम? नहीं होएगा रूम ठंडा, मुझे तो नहीं लगता होएगा। मुझे लगता है ये फरीदाबाद से नहीं होगी, इसलिए। खैर बता दूं आपको, आप 25 से 26 के बीच में अगर टेम्परेचर रखते हैं अपने एसी का तो दैट्स इनफ। आप रूम को क्लोज रखिए और रूम ठंडा हो जाएगा। एसी की टाइम टू टाइम सर्विस कराइए और उससे आपका जो बिजली का बिल है वो घटना चालू हो जाएगा। 40% तक घट सकता है आपका बिजली का बिल। और इसके साथ साथ आप उसमें स्लीपर ज़रूर लगा दीजिए। स्लीपर से क्या होता है, स्लीप मोड एक एक्टिवेट करते हैं हम लोग एसी में। तो स्लीप मोड जैसे ही आप डालेंगे अपने एसी में तो होगा क्या, जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर और एसी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, एसी थोड़ी देर के लिए कट डाउन हो जाएगा। तो इससे आपका बिजली का बिल बहुत हद तक बच सकता है। तो ये सब चीज़ों की भी कोशिश कीजिए ना। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए ना, क्योंकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक गाने लेकर आता रहूँगा।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

बारिश आ रही है क्या या फिर आने वाली है क्या? ये सवाल सभी के मन में है क्योंकि ये उमस नहीं झेली जा रही। जहां पर रक्षाबंधन वाले दिन भी इतनी ही ज्यादा उमस थी, उतना ही उमस आज भी था। यानी कि आज 43 डिग्री फील हो रहा था, वैसे टेम्परेचर मैक्सिमम 36 डिग्री गया था, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। और वक्त हो चुका है आप सभी के साथ मौसम विभाग को चालू करने का। यानी कि देखो, मौसम विभाग से बात करते हैं मतलब वो गूगल पे अपडेट दे देते हैं, हम भी गूगल से ले लेते हैं अपडेट। और बता दूं आपको, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है कल शाम को बारिश हो जाए, हो सकता है कि परसों ही बारिश आपको देखने को मिले, मगर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये चार दिन बढ़िया वाली बारिश देखने को मिल सकती है। अब भगवान करे कि अच्छी सी बारिश हो जाए, बट ये पानी ना भरे तो ज़्यादा बढ़िया है। खैर, पानी से वापस आते हैं आज के मौसम पे। तो आज मौसम का हाल यही है कि आपको जिस तरह का आज मिला था वही आपको कल मिलेगा। यानी कि कल भी ऐसे ही सेम टू सेम गर्मी होने वाली है, और कल मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस जाएगा, बट कहीं ना कहीं उमस से राहत नहीं मिलने वाली आपको। आज ह्यूमिडिटी 50% थी, तो कल भी उम्मीद है 60% ह्यूमिडिटी होने की। और एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो वो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो देखो, अब फरीदाबाद वालों, बारिश का इंतज़ार तो कर लो, बट अगर बारिश अगर आ गई बाय चांस, मान लेते हैं 10% चांस है वैसे बारिश के, तो मान लेते हैं बारिश अगर आ गई तो फिर वाटर लॉगिंग होगी तो ट्रैफिक जाम होगा तो हम लोगों के मन में स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर कहाँ से जाए यही मन में सवाल रहता है कि नहीं। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। और रेडियो महारानी 89.6 पर अभी वेदर का अपडेट तो मैंने आपको दे दिया, मगर वापस आकर हम लोग बात करने वाले हैं क्या हाल है पे, क्योंकि एक नया सेगमेंट है, करेंगे उसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आपके ग्रुप में कोई क्रिकेट लवर है? कोई ऐसा इंसान जिससे कभी भी पूछ लो कि क्या हाल है, वो बोलेगा भाई सब कुछ बढ़िया है मगर विराट कोहली खेल नहीं रहा है मैच। मतलब हमेशा वो हर चीज में क्रिकेट को लेकर आ जाएगा। होगा आपके ग्रुप में?

बाद है, वो क्या बोलेगा, भाई इंडिया का मैच है आज, मेरी पर्सनल लाइफ ऑफिशियली पोस्टपोन्ड है, क्योंकि उस दिन उसके लिए पर्सनल लाइफ जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो बोलता है बढ़िया हूँ, बस मैच के बीच में कोई बात करने की कोशिश ना करें। हाँ बिल्कुल, जैसे कि वो मैच देखने बैठता है ना वो इंसान, मेरे दोस्त भी है बहुत सारे, आपके भी दोस्त होंगे, मैच देखने अगर बैठ जाए फिर उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। और इंडिया की, इंडिया बैटिंग कर रही होती है तो वो इंसान खाना भी इनिंग्स ब्रेक में खाता है। हाँ ऐसे ही होता है, वो खाना खाने के लिए भी नहीं उठता। और हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो जो पहले से ही बहुत सारा खाना ला के अपने सोफे पे बैठ जाए और फिर उसके बाद पूरे मैच के दौरान कुछ ना कुछ खाते रहे। ऐसे इंसान से पूछ लो क्या हाल है, वो बोलेगा स्कोर कार्ड देखते देखते मेरी हार्ट बीट भी रन रेट के साथ अप डाउन हो रही है। बहुत इमोशनल हो जाते कुछ लोग क्रिकेट को लेकर। मैच जीत गए तो सब भाई हैं, हार गए तो अंपायर, पिच और सिलेक्शन कमेटी सबकी गलती है। ऐसा ही होता है। अच्छा एक और चीज़, किसी से भी पूछो कि क्या हाल है।

यही सब चीजें चलती है कि क्या स्कोर होगा, और उसका दिमाग तो स्टेडियम में ही पहुंचा होता है। उससे पूछ लो क्या हाल है, बोलेगा इंडिया का मैच हो तो 3 घंटे के लिए फोन साइलेंट हो जाता है उसका और दुनिया साइलेंट हो जाती है, बस कमेंट्री लाउड होती है हर चीज पे, उसकी खुद की कमेंट्री भी चलेगी। क्रिकेट इतना पसंद है कि रेन डिले में भी वेदर ऐप को रिफ्रेश करता है वो। इसके अलावा आपको बता दूं, किसी से भी पूछ लो क्रिकेट लवर से खासकर कि क्या हाल है, वो बोलेगा भाई फैंटेसी टीम में कैप्टन फेल हो गया, आज घर में किसी से बात मत करना। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, जैसे पहले फैंटेसी ऐप्स होती थी उसमें कैप्टन बनाते थे, और फिर छोड़ो इन सब चीज़ों को। एक और चीज़, क्रिकेट लवर से जब भी पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा क्रिकेट लवर तो हूँ, मैच का रिजल्ट खराब हो सकता है लेकिन मेरी एनालिसिस हमेशा करेक्ट होती है। इसके हिसाब से जो टीम इसने बनाई होती है ना, वो चीज़ तो ज़रूर विन करेगी, है कि नहीं। तो आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो क्रिकेट लवर होंगे, शेयर तो आप नहीं कर सकते बट हाँ उनकी बातें मुझ तक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

क्या आपको पता है मैं रोज एक इंसान का गाना जरूर चलाता हूँ और उस शख्स का नाम है आदित्य रिखाड़ी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। आप सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं आदित्य रिखाड़ी की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है। ये लड़का पांचवी क्लास से गाने लिख रहा है खुद से और खुद से ही गाना गाता था, कंपोज भी खुद ही किया। और बता दूं, इनका एक गाना है पारो, सुना है आप लोगों ने बहुत बार। जैसे इंटेंस हार्ट ब्रेक और हेल्पलेसनेस फील करता है ना इंसान, गहरा दिल टूट गया और फिर उसका बेबसी है उसके अंदर। दिल के टुकड़े हजारों बिखरने से पहले आज पकड़ लेना, क्या गजब की लाइनें लिखी है। तो बता दूं आपको, कंपोज भी खुद किया है, गाया भी खुद है, लिखा भी खुद है, सब कुछ ऑल टोटल। और सारे इमोशंस इसमें बिखेरे गए हैं, जैसे कि कोई इंसान सुकून की तलाश कर रहा है। इसमें एक लाइन है ना, तू बाहों में रख ले दो पल, तू मुझको, मतलब ऐसे फिर चाहे दूर हटा ले, हाँ मैं पीकर कुछ नहीं कहूँगा, तू मुझे सुला देगी क्या ऐसे का, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है जो बहुत सारी चीज़ें बताती है। और उसे देखता हूँ कोई गैर छुए अब और जहर क्या पीऊँ, ये लाइन पता नहीं क्यों ड्रॉप के साथ आती है और दिल छुके पार निकल जाती है। तो ये था आज का एक गाने को डीकोड करने का समय, और इसी के साथ साथ हमने गाने को डीकोड किया, मगर गाना भी तो चलाना बनता है ना। तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं ऐसी बातें और भी करता रहूँगा, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके लिए कोई और गाना डीकोड करूं, तो नंबर है जी मेरा 9654896896, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना।

I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

89.6 रेडियो महारानी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवर

SIR का फॉर्म सबने भर दिया था ना, सब लोगों ने ढंग से। फिर उसके बाद उसकी लिस्ट आ गई थी कि ये रहे नाम, ये रहा आपका एड्रेस। अगर उसमें भी कोई गलती थी तो 30 अगस्त तक की डेट दी गई थी कि आप लोग फिर से उस चीज़ को ठीक करवा सकते हो। मगर अब उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 सितंबर कर दिया गया 30 अगस्त की जगह, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 99.6 पर। भारत का निर्वाचन आयोग और हरियाणा में जितने भी ये वोटर्स लिस्ट थी, तो उसमें जो पुनर्निरीक्षण कहते हैं हिंदी में अगर मैं बोलूँ, बेसिकली आप लोगों ने जो भी डिटेल्स दी थी अपनी, और वो डिटेल्स वापस आई है कि हाँ आपका नाम, आपका पता, जो भी चीज़ करेक्शंस थी सब कुछ हो गई थी। फिर उसके बाद काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग नाम तो सही देते हैं बट वहाँ पर गलत अगर स्पेलिंग चढ़ गई है, या फिर एड्रेस गलत डल गया है, या फिर आपका कॉन्टैक्ट गलत डल गया, कुछ भी एनीथिंग ABCXYZ, तो आप लोग उसको करेक्ट करवा सकते थे। पहले डेट थी 30 अगस्त, मगर अब उसको 30 अगस्त की बजाय 30 सितंबर कर दिया गया। 30 सितंबर तक आप लोग अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, और इसका जो निपटारा था ना वो 28 सितंबर तक हो जाना था, बट अब इसको चेंज करके 28 अक्टूबर तक होगा वो। तो डेट्स बढ़ा दी गई है, और अगर आपकी जो ये वोटर लिस्ट है उसका जो प्रकाशन है फिर से होगा, वो 3 अक्टूबर की जगह अब 6 नवंबर को किया जाएगा। तो अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि आपकी नाम कहीं गलत है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ जाके उसे करेक्ट करवा लीजिए। और जितने भी लोग 18 से ऊपर के हो गए हैं, भले ही कल हुए हैं, परसों हुए हैं, आज हुए हैं, या फिर होने वाले हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपना वोटर आईडी कार्ड ज़रूर बनवाएं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एक हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर बहुत सिंपल सा है, 1950। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका नाम में कुछ भी गलती है, तो आप अपने BLO से कॉन्टैक्ट कीजिए। अब BLO का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को जो फॉर्म दिया था ना, तो दो फॉर्म्स थे, एक तो भर के आपको रिसीविंग लेनी थी, तो जो रिसीविंग ली है ना आपने उसमें BLO का नंबर भी है, तो उनको कॉल करके आप लोग कर सकते हैं, उन्हें कॉल करके कॉन्टैक्ट कीजिए। और इसी के साथ साथ आप लोग अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ऐसी खूब सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता रहूँगा, और अभी इस गाने को एंजॉय कीजिए। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका

0: इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहाँ सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अबीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ हैं अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

क्या आप लोगों ने सपने में कभी भूत देखा है? क्योंकि जब भूत को देखते हैं ना हम लोग सपने में, काफी बार ऐसा होता है कि नींद भी खुल जाती है। और वैसे भी वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का, यानी कि नाइटमेयर्स का। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। स्वागत है आरजे गौरव आप सभी का, करता है मतलब मैं उल्टा बोल गया शायद, आज गौरव आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर, HR 896 सुन रहे हैं आप। एंड एक बात बोलना चाहूंगा, देखो सपने में भूत देखते हैं हम लोग काफी बार होता है। अगर आपको नॉर्मल भूत दिख रहा है तो इसका मतलब है रियल लाइफ में आपकी चिंता चल रही है, डर है आपके मन में, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपका। और अगर भूत हमला कर रहा है अगर आप पे, तो समझ लो ये आने वाली किसी बीमारी, एक्सीडेंट या फिर बड़ी मुसीबत के लिए अलर्ट जारी हो रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप भूत से बातें कर रहे हैं तो भूत से बात करना हमेशा अशुभ माना जाता है, ये किसी बने बनाए काम को बिगड़ने या फिर धोखे का इशारा भी हो सकता है। और भूत से डर कर अगर आप लोग भाग रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप रियल लाइफ में भी अपनी किसी जिम्मेदारी या प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और भूत को मारना या भूत को हराना, अगर आप भूत को हरा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जल्दी अपनी सारी परेशानियों पर जीत हासिल कर लेंगे। और देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है ना तो उसको दूर फेंकिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन। और हमेशा अपने आप से बोलिए आई एम डन विद इट, नहीं मैंने कंप्लीट कर लिया, देन आई एम डन। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर भी आप सभी के लिए यही गाना आई एम डन, मान भानु की आवाज में, दिल में अब कोई ख्याल ही नहीं है। सुनिए इस गाने को, मेरी आवाज में अच्छा नहीं लगेगा, आप सुनिए ओरिजिनल आवाज में।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: क्या आप लोग जिम जाना चाहते हैं, क्या आप लोग वर्कआउट करना चाहते हैं, मगर समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव इज विद यू, यानी कि जिम ब्रो आ चुका है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है जिम ब्रो का। और मैं कोई देखो बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, बट हाँ जिम की टिप्स तो आपको दे सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं भी बहुत सालों से जिम जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है इतना मेरे पास, कम से कम 14 साल का एक्सपीरियंस है। खैर, अपने एक्सपीरियंस गिनाने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पे, आप लोगों को ये बस बोलना चाहता हूँ कि मेरा जिम जाना कैसे हुआ था। देखो, हर किसी का फर्स्ट डे होता है, डे फर्स्ट होता है, तो उस चीज़ को आपको भी लगाना है। मतलब आप देखो, अपने जिम जाइए, अपने घर के आसपास वर्कआउट करने जाइए, अपने घर के आसपास पार्क में जाइए। सबसे पहले दिन क्या होगा, बहुत बोरियत फील होगी, तो पहले दिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है जिम के अंदर। पहले दिन आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट आपको वर्कआउट करके वापस घर आ जाना है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको टाइम इंक्रीज करके उसको 45 to 1 आवर करना है धीरे धीरे। और अगर आपको लगता है कि पहला दिन ही नहीं जा पा रहे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने किसी दोस्त के साथ मिलके आप लोग जिम ज्वाइन कीजिए। क्योंकि होगा क्या कि आप दोनों में से कोई ना कोई एक इंसान तो ज़रूर बोलेगा, नहीं यार बस हो गया यार, और नहीं करते, चलते हैं। तो और एक इंसान ज़रूर होगा जो बोलेगा चल चल चल वर्कआउट करते हैं। तो दोनों में से ऐसा इंसान ज़रूरी है, मतलब देखो एक इंसान होना चाहिए जो पुश करे आपको हर बार। तो दोस्त भी ऐसे ही बनाइए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग जिम जाने की सोच रहे हैं या फिर वर्कआउट शुरू करने की सोच रहे हैं, जस्ट गो टू अ पार्क, पार्क में जाइए, वॉक कीजिए, एक वॉक एक राउंड मारिए, फिर उसके बाद आप अगर हो सकता है तो दूसरा राउंड भी कंप्लीट कीजिए। और अपने आप को ना टारगेट्स दीजिए, लाइक टारगेट्स ऐसे कि मुझे जो सामने वो पेड़ दिख रहा है मैं वहाँ तक वॉक करूँगा, या फिर अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम में आप टारगेट लीजिए, अपने आप से टारगेट दीजिए अपने आप को कि आज मैं 5 किलो का डंबल उठा रहा हूँ, तो कल मैं 7.5 किलो का डंबल उठाऊंगा, कल ना सही अगले हफ्ते मैं 7.5 का ज़रूर उठाऊंगा डंबल। और ऐसे ही करते करते करते करते आप अपने गोल्स तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, बस टारगेट बना के रखिए। और मैं तो एक और आइडिया देता हूँ आप लोगों को, एक काम कीजिए, एक कॉपी ले जाया करिए। कॉपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो नोट्स तो अपने फ़ोन में भी बन जाते हैं, बट कॉपी में जब आप लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोग्रेस देख रहा हूँ। तो उस चीज़ को ज़रूर करिए और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसे ही टिप्स आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। अभी फिलहाल एक गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 89.6।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: जान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

अगर मैं आपको अभी बोलूं कि कैसा गया आपका पूरा हफ्ता, आप लोग सोचोगे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया, आज तो मंडे है। बिल्कुल मंडे ही है आज। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और पता मैंने ऐसी बात क्यों बोली, मैंने ऐसी बात इसलिए बोली क्योंकि पूरा हफ्ता कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा आप लोगों को। सोचो कल सितंबर है, नवा महीना इस साल का। रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी पर। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि वक्त कितनी तेजी से बीतेगा ये आपको पता नहीं चलेगा, और ऐसे ही मेरा भी वक्त बीत चुका है। पूरे 4 घंटे हो गए आप लोगों के साथ बैठे बैठे और पता नहीं चला कितनी तेजी से टाइम बीता। 8:54 मेरी स्टूडियो क्लॉक में, एंड इसी के साथ साथ बैठा पड़ा हूँ आप लोगों के साथ। बाहर मौसम कैसा एक बार देख कर आऊँगा, देख के आऊँगा, मैं जा ही रहा हूँ, तो मैं यही बताना चाहता था। देखो वक्त बहुत तेज़ी से बीत रहा है, अगर आप किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं तो आज की डेट में शुरू कर दीजिए। हो सकता है वो एक हेल्दी हैबिट हो सकता है आप जिम जाना चाहते हो सकता है आप रनिंग करना शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है आपके मन में कोई हॉबी है जो बचपन से अंदर थी बट आप कभी निकाल नहीं

है उसको बाहर, उसको ज्वाइन कीजिए। हो सकता है आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, जो भी एनीथिंग एक्स वाई जेड करिए, उसको आज ही टाइम है, आज से ही शुरुआत कीजिए। और इसी के साथ साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को भी लगता है आप लोग माइक पे अच्छा बोल सकते हैं, तो आइए आप भी हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर हमारा 9654896896, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपनी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेजिए, और मेरा नाम ज़रूर लिखिएगा कि आरजे गौरव ने बोला था, एंड आपको भी हम लोग मौका देंगे रेडियो पर अपनी आवाज़ बिखेरने का, पूरा फरीदाबाद फिर आपकी आवाज़ सुनेगा। तो चलिए, इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से, मतलब कल मिल जाएंगे शाम को 5 से 9। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वापस आएगी गीत विदेश बाजिया, प्यार भरी बातें प्यार भरे गानों के साथ, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ।

0: Pansikatan.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

रात थोड़ी और गहरी हो चली है और शायद इस वक्त दिन भर की भागदौड़ के बाद हम सबके पास अपने दिल की आवाज सुनने का थोड़ा सा वक्त है। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी और ये है इश्क बाजियां, जहां हम मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि उसे अल्फाज भी देते हैं। और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, और इश्क बाजियां का ये वो हिस्सा है जहां हम इश्क और शायरों की बात करते हैं, यानी कि इश्क शायराना। कभी किसी शायर के लफ्जों में हमें अपना कोई पुराना रिश्ता मिल जाता है, कभी कोई अधूरी बातचीत, कभी किसी का इंतजार, और कभी वो सवाल जो हमने सामने वालों से कभी पूछा ही नहीं। आज की रात एक ऐसे ही शायर के नाम है दाग दहलवी साहब। दाग की सबसे खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने इश्क को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। उनकी शायरी में मोहब्बत है मगर उसके साथ नखरा भी है, शिकायत भी है और थोड़ी सी शरारत भी है। उनके शब्दों में मोहब्बत कोई दूर की चीज नहीं लगती बल्कि बिल्कुल हमारी जिंदगी जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सामने बैठकर कह रहा हो, अच्छा तो तुम नाराज हो, चलो पहले ये बताओ नाराज क्यों हो। शायद इसीलिए दाग की शायरी आज भी इतनी अपनी सी लगती है, क्योंकि उन्होंने इश्क को आसमान पर नहीं रखा बल्कि हम इंसानों के बीच रखा है। और अब कुछ ऐसे अल्फाज जिनमें आपको शायद अपनी कोई पुरानी कहानी, कोई पुराना खत या कोई ऐसा नाम मिल जाए जिसे आपने बहुत पहले भुलाने की कोशिश की थी। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात की इस खूबसूरत महफिल में इश्क बाजिया के साथ, और ये है हमारा खास सेगमेंट इश्क शायराना। हमने बात की है दाग दहलवी साहब के बारे में, उनके अंदाज, उनके इश्क के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए दाग आज भी याद किए जाते हैं, उनके अल्फाज। कभी आपने नोटिस किया है, किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम एक्चुअली तब शुरू नहीं होती जब वो आपसे दूर होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपको उसकी क्लोजनेस में किसी और की प्रेजेंस महसूस होने लगे। एक नया नाम, एक नया जिक्र, एक बदला हुआ अंदाज, और फिर दिमाग कहता है शायद कुछ नहीं है, लेकिन दिल कहता है नहीं कुछ तो है। और दाग दहलवी ने इसी कुछ तो है वाली बेचैनी को कितने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा है। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। सोचिए सिर्फ एक खत में आया हुआ एक नया नाम और पूरी मोहब्बत के कॉन्फिडेंस पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब आप बताइए कि आपने कभी किसी के मैसेज में कोई छोटी सी बात नोटिस करके

पूरी कहानी अपने दिमाग में बना ली है। कभी ऑनलाइन दिखने पर, कभी किसी की फोटो में किसी का नाम देखकर, या कभी बस इस वजह से कि आज तुम पहले जैसे बात नहीं कर रहे। लव इज स्ट्रेंज राइट? कभी कोई बड़ी बात नहीं होती, बस टोन बदलती है और हमें तब समझ आता है। दा का अगला शेर है कि वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। यानी दर्द भी उसी ने दिया और फिर बड़े मासूम बनकर पूछ रहे हैं किसने दिल दुखाया है। वाह दाग साहब, और ऑनेस्टली ये सिचुएशन आज भी कितनी रिलेटेबल है ना। तो अगर आपको किसी के बिहेवियर में कुछ तो बदला है वाली फीलिंग आए तो शायद दाग को पढ़िएगा, हो सकता है आपके अपने सवाल का जवाब आपको मिल जाए। लेकिन अपने सवाल के लिए सही अल्फाज जरूर मिलेंगे आपको। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, और ये है इश्क बाजियां। स्टे विद मी क्योंकि दाग की कहानी अभी बाकी है।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत ज़रूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कम्प्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सब के सोर्सेज का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

बाजियां। इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ। इश्क वाली गीत बात चल रही है दाग दहलवी साहब के बारे में। और कभी कभी ना रिलेशनशिप में कोई बड़ी फाइट नहीं होती है, ना कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप होता है, बस एफर्ट्स कम होने लगते हैं। पहले जो इंसान खुद मैसेज करता था, अब आपके मैसेज का रिप्लाई भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता है। पहले जैसे आपकी छोटी छोटी बातें याद रहती थी, अब उसे आपकी बड़ी बड़ी बातें भी याद नहीं रहती हैं। और आप पूछते भी नहीं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं जवाब वो ना मिल जाए जिसका डर आपको पहले से है। हैव यू एवर बीन देयर, जहां रिश्ता टेक्निकली खत्म नहीं हुआ लेकिन दिल को लगने लगा कुछ तो खत्म हो गया है। दाग दहलवी की यही तो खूबसूरती है, उन्होंने इश्क के सिर्फ खूबसूरत हिस्से नहीं लिखे बल्कि उस प्यार को भी लिखा है जिसमें शक है, शिकायत है, उम्मीद है और टूटने का डर भी है। उनकी गजलों में प्यार है, जिंदगी बहुत सहज है, प्लेफुल है, लेकिन इमोशंस जो है वो दिखाई देते हैं। और इसी गजल में एक जगह वो कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। सोचिए, प्रॉमिसेस याद है वो कि मैं हमेशा साथ रहूंगा, याद है वो कुछ भी हो जाए हम साथ हैं, याद है। क्योंकि रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सामने वाला बदल गया है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसके पुराने वर्जन को छोड़ नहीं पाते हैं। हम आज के इंसान से बात कर रहे होते हैं लेकिन उम्मीद कल वाले इंसान से लगाए हुए बैठे होते हैं। और शायद यही वजह है कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं, लोग चले जाते हैं लेकिन उनके कहे हुए शब्द हमारे अंदर रह जाते हैं। कभी किसी का एक मैं होना सालों तक याद रहता है और कभी किसी का एक अब पहले जैसा कुछ नहीं है पूरी कहानी बदल देता है। तो अगर आज रात आपके दिल में कोई भी ऐसी अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है या बस मन हल्का

करना है, यू कैन टॉक टू मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर RJGeet01 पर DM कर सकते हैं, रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नाम बताना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस अपने दिल की बात बोल देना ही इनफ होता है, बिकॉज सम फीलिंग डोंट नीड अ सोल्यूशन, दे जस्ट नीड अ लिसनर। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। स्टे विद मी, रात अभी बाकी है और दाग के अल्फाज में छुपी और कुछ मोहब्बत की बातें बाकी हैं।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छट के शो है इश्कबाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। कुछ रिश्ते ना ऑफिशियली कभी खत्म नहीं होते हैं, बस उनकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। पहले घंटों बातें होती थी अब बस टेक केयर पर कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। पहले एक दूसरे की खामोशी समझ आ जाती थी, अब बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मुझे बुरा क्यों लगा। और शायद सबसे मुश्किल चीज यही है जब आपको प्यार तो अब भी उतना ही हो लेकिन सामने वाला आपको उतनी जगह देना बंद कर दे। बागदलवी साहब की बातों में इश्क का ये रंग बार बार।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। एक जमाना ऐसा था जहां ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप था, ना लेट नाइट कॉल्स, फिर भी लोग प्यार में पड़ते थे, चिट्ठियां लिखते थे, नजरें मिलाते थे और कभी कभी तो सिर्फ एक मुलाकात के इंतजार में पूरा दिन गुजार देते थे। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी और इश्क बाजिया में अब वक्त है थोड़ा सा पीछे जाने का, जहाँ प्यार थोड़ा स्लो था लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा इंटेंस भी। ये है रेट्रो इश्क और आज की कहानी है दो ऐसे सितारों की जिनकी केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन पर नहीं थी बल्कि कैमरा बंद होने के बाद भी उनके बीच एक कहानी चल रही थी। नाम है देवानंद साहब और सुरैया। 1940s का बॉम्बे, फिल्मी दुनिया अपने गोल्डन फेज की तरफ बढ़ रही थी और इसी दौरान विद्या के सेट पर देवानंद साहब और सुरैया की मुलाकात होती है। कहानी में ट्विस्ट ये था कि सुरैया उस वक्त एक बड़ी स्टार थी और देवानंद अभी भी अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन प्यार को ना बॉक्स ऑफिस समझ पाता है ना स्टारडम। कहा जाता है विद्या की शूटिंग के दौरान एक इंसिडेंट ने दोनों की नजदीकियां बढ़ाई। एक बोट सीक्वेंस के दौरान सुरैया को बचाने के बाद देवानंद की तरफ उनका दिल और झुक गया और फिर शुरू हुआ वो दौर जहां फीलिंग थी लेकिन उन्हें ओपनली कहना इतना इजी नहीं था। लव लेटर्स लिखे जाते थे लेकिन सीधे हाथ में नहीं दिए जाते थे। कभी कोई को-स्टार मैसेंजर बनता, कभी कोई कैमरामैन, कभी कोई डायरेक्टर। आज के जमाने में हम एक डीएम करके पूछ लेते हैं, सो आर वी डेटिंग? और उस दौर में एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए भी पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती थी, लेकिन शायद यही तो उस प्यार की खूबसूरती थी। देयर वॉज नो इंस्टेंट एक्सेस और जब इंतजार होता था ना तो एक छोटी सी मुलाकात भी बहुत बड़ी लगती थी। देवानंद साहब और सुरैया की ये कहानी अभी शुरू हुई थी लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस प्यार के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या दो लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार करके साथ रह सकते हैं? इसका जवाब शायद उतना आसान नहीं था। स्टे विद मी क्योंकि रेट्रो इश्क की कहानी अभी शुरू हुई है

0: रेडियो महारानी पर रात का ये सफर जारी है और इश्क बाजिया में अब हम वापस जा रहे हैं उस दौर में जहां प्यार के लिए एक फोन कॉल भी इवेंट हुआ करता था। ये है हमारा सेगमेंट रेट्रो इश्क। अभी हमने कुछ ही देर पहले बात शुरू की थी देवानंद साहब और सुरैया की, दोस्तास जो पर्दे पर साथ आए और धीरे धीरे असल जिंदगी में भी एक दूसरे के हो गए। लेकिन अब कहानी थोड़ी सीरियस होने वाली है क्योंकि प्यार चुप कर करना ईजी नहीं है ना, लेकिन प्यार के लिए स्टैंड लेना दैट वॉज द रियल टेस्ट। देवानंद साहब और सुरैया एक दूसरे को लव लेटर्स और मैसेजेस के जरिए कनेक्ट किया करते थे। कई बार उनके कोस्टार्स इस सीक्रेट कम्युनिकेशन में मदद करते थे। जरा इमेजिन कीजिए, आज हम किसी को पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम खोलते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, एक लाइक करते हैं और फिर शायद डीएम। और उस दौर में एक खत लिखा जाता था, फिर सोचा जाता था कि ये खत पहुंचाया कैसे जाए, फिर इंतजार होता था कि जवाब आएगा या नहीं, और शायद इसी इंतजार में उनके प्यार को और ज्यादा इंटेंस बना दिया जाता था। फिर आया वो मोमेंट जब देवानंद साहब ने सुरैया से शादी के लिए बात की। उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि प्यार के आगे बाकी सारी चीजें छोटी हैं। सुरैया भी उनसे प्यार करती थी लेकिन फैमिली का प्रेशर बहुत बड़ा था। देवानंद साहब ने उन्हें उस वक्त एक डायमंड रिंग दी, उस वक्त करीब 3,000 की रिंग वो बताई जाती है। अब सोचिए, एक तरफ वो रिंग है और एक तरफ वो इंसान है जिसे आप अपना पूरा फ्यूचर मान चुके हैं, और दूसरी तरफ फैमिली की वो आवाज जो कह रही है ये रिश्ता नहीं हो सकता। आज भी कितने रिलेशनशिप इसी जगह आकर रुक जाते हैं ना, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उनके बीच सिर्फ फीलिंग्स नहीं सर्कमस्टांसेस भी खड़े होते हैं। तो तब सवाल ये नहीं रहता कि डू यू लव मी, सवाल हो जाता है हाउ फार आर यू विलिंग टू गो फॉर दिस लव। देवानंद साहब शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे लेकिन सुरैया के लिए चीजें इतनी सिंपल नहीं थी, और शायद यहीं से उनकी लव स्टोरी का सबसे पेनफुल चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि कभी कभी दो लोगों के बीच प्यार कम नहीं होता, बस उनके पास उसे बचाने की फ्रीडम नहीं होती। अभी वक्त है गाने का, स्टे विद मी, क्योंकि रेट्रो इश्क की कहानी अभी कुछ दिल तोड़ने वाली है।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, मैं एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

रेडियो महारानी पर रात थोड़ी सी और गहरी हो गई है और इश्क बाजिया में चल रहा है रेट्रो इश्क। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हमने बात की थी देवानंद साहब और सुरैया की। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ परिवार की बंदिशें। लेकिन असली हार्ट ब्रेक तब शुरू होता है जब आपको ये समझ आ जाए कि आप सामने वाले से प्यार करते हैं लेकिन उसके साथ जिंदगी जी पाना शायद अब आपके हाथों में नहीं है। देवानंद साहब शादी के लिए तैयार थे, उन्होंने सुरैया को कोर्ट मैरिज के लिए मनाया लेकिन सुरैया की ग्रैंड मदर इस रिश्ते के खिलाफ थी। और एक और बात थी, देव चाहते थे कि शादी के बाद सुरैया अपना करियर छोड़ दे। सुरैया जो उस वक्त एक बहुत बड़ी स्टार थी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब जरा आज की बात कर लेते हैं, किसी रिलेशनशिप में प्यार है लेकिन फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। एक कहता है मेरे साथ चलो, दूसरा कहता है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ लेकिन खुद को छोड़कर नहीं। एंड दैट्स वेयर थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि प्यार में हम अक्सर ये पूछते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन शायद असली सवाल ये होना चाहिए क्या हम एक दूसरे की जिंदगी और चॉइसेस की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। देव साहब और सुरैया की कहानी में फैमिली प्रेशर भी था, अलग बैकग्राउंड भी थे, पर्सनल चॉइसेस भी थी और आखिरकार सुरैया ने शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने बाद में खुद कहा था कि शायद उनके अंदर उस कदम को उठाने का कॉन्फिडेंस नहीं था और ये भी कि शायद वो मिस्टेक थी या शायद डेस्टिनी। यहीं पर ये कहानी आज के लोगों से कनेक्ट करती है। कितने रिलेशनशिप्स ऐसे हैं ना जहाँ दो लोग एक दूसरे को जेन्युइनली चाहते हैं लेकिन टाइमिंग सही नहीं है। कभी करियर बीच में आ जाता है, कभी फैमिली, कभी डिस्टेंस, कभी ईगो, या कभी दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी ये सीख नहीं पाते कि एक दूसरे के लिए जगह कैसे बनाई जाए। बिकॉज लव इज नॉट जस्ट अबाउट चूजिंग समवन, इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सेप्टिंग देम एज दे आर। देव और सुरैया की कहानी यहीं टूट जाती है। देवानंद साहब आगे बढ़ जाते हैं और सुरैया, उन्होंने कभी शादी नहीं की। अब सवाल ये नहीं है कि उनकी कहानी में कौन सही था या कौन गलत। शायद कुछ लव स्टोरीज में कोई विलन नहीं होता, समटाइम्स लाइफ इटसेल्फ बिकम द विलन। और कुछ कहानियां हैप्पी एंडिंग के लिए नहीं होती, वो बस हमें सिखाने आती हैं किसी को चाहना और किसी के साथ जिंदगी बिता पाना दो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैं। अब इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी है, वक्त है गाने का। स्टे विद मी।

ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अकागुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकी, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

देव साहब और सुरैया की कहानी में सबसे खूबसूरत बात शायद ये नहीं थी कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, बल्कि ये थी कि वो प्यार खत्म नहीं हुआ, बस उसकी कहानी अधूरी रह गई। शो है इश्कबाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और आज जब हम रिलेशनशिप्स में क्लोजर ढूंढते हैं, एक आखिरी कॉल, एक आखिरी मैसेज, एक एक्सप्लेनेशन कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन कुछ कहानियों को क्लोजर मिलता ही नहीं। कुछ कहानियां बस दिल के किसी कोने में रखी रह जाती हैं, बिल्कुल उस पुराने खत की तरह जिसे सालों बाद खोलो तो कागज पुराना हो चुका होता है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी फ्रेश हैं। देव साहब और सुरैया की कहानी भी शायद ऐसी ही थी। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वो जो व्हाट इफ था ना, अगर उस वक्त हालात हमारे फेवर में होते तो सवाल शायद कभी पीछे नहीं छूटता। और शायद यही तो लव की सबसे स्ट्रेंज बात है, हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई पॉसिबिलिटीज को इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते। कभी कभी हम इंसान को नहीं, उस फ्यूचर को मिस करते हैं जो उसके साथ हमने कभी इमेजिन किया था। और शायद इसीलिए देव साहब और सुरैया की कहानी आज भी इतनी ज्यादा रेलेवेंट लगती है, क्योंकि आज भी प्यार में लोग फैमिली, सोसाइटी, करियर, टाइमिंग, इन सब के बीच कहीं ना कहीं खुद को चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, तब प्यार के लिए चिट्ठियां भेजी जाती थी, आज टाइपिंग दिखता है तो फिर से सिर्फ सीन, और तब एक डायमंड रिंग पूरी कहानी का सिंबल बन सकती थी। आज हजारों मैसेजेस के बाद भी कोई कमिटमेंट नहीं मिलता, लेकिन एक चीज शायद तब भी सेम थी और आज भी सेम है, जब प्यार सच्चा होता है ना तो उसका असर रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। कभी कभी कुछ अधूरी कहानियां ही हमें सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं, क्योंकि पूरी कहानी खत्म हो जाती है लेकिन अधूरी कहानी में हमेशा एक सवाल बचा रहता है, क्या होता अगर। और शायद इश्क की सबसे खूबसूरत सजा भी यही है। मैं हूँ आरजे गीत और ये था रेट्रो इश्क, इश्क बाजियां सुन रहे हैं आप। मिलते हैं फिर एक और पुरानी मोहब्बत की कहानी के साथ, तब तक अपने प्यार को थोड़ा सा वक्त दीजिए, ख्याल रखिएगा और प्यार को थोड़ा सा ओल्ड स्कूल रहने दीजिए। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है, फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी है। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है। कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री रामसुख दास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं,

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। यही ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण, जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

मोह सिंधु की दारा, काढ़ दया कर कर मोहि पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कि कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब रसना थकी न बोल्यो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है। लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है। अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते। कि जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूढ़ मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है। भज गो